ये गाना है लता मंगेशकर की आवाज़ में, जंजीर फिल्म से। गुलशन बावरा के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, और इस गाने को सुनना चाहते हैं जयसिंहपुरा खोर से दिलीप सिंह।

फरमाइशी फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आखिर में लीजिए सुनिए राहत फतेह अली खान की आवाज़ में रेड फिल्म का गाना, और इसकी फरमाइश हमारे पास आई है जयपुर से जयेश और अजय की।

0: अभी आप सुन रहे थे हेलो जयपुर। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन के 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी

0: कार्यवाही भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। विद्यार्थियों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने फैसले पर कायम है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। अभी समाचार मिला है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्य जीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के भारोत्तोलक महाराजन अरुमुंग पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तर प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर नाथद्वारा करौली भरतपुर झुंझुनू अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं।
3: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
4: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
5: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234।

0: 1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से लीजिए अब सुनिए हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर में यानी 12:10 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। आज के कलाकार होंगे मोहम्मद बुंदू खां। इस सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 12:40 पर और 1:05 पर। इसके अलावा 3:00 भी महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम पणिहारी दिन में 1:30 पर। आज इसमें होगी मर्दल विश्व स्टील पैन दिवस पर और चालता चालता में होगी बात खुदीराम बोस बलिदान दिवस पर। राजस्थानी लोक संगीत हम आपको सुनवाएंगे 2:30 पर। आज की कलाकार होंगी सीमा मिश्रा। दिन में 3:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:00। आज शाम 7:00 ग्राम भारती में आज हम आपको सुनवाएंगे बातचीत प्रधानमंत्री कुसुम योजना पर। जानकारी देंगे डॉक्टर बनवारी लाल यादव। 7:30 पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी। इसमें आज होगी बातचीत वर्षा ऋतु में सब्जी उत्पादन। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। इसके अलावा श्रोता सुनेंगे मौसम की जानकारी बाजार भाव और कुछ गीत भी। रात्रि 8:00 सुनिएगा संसद समीक्षा। 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन और 9:30 पर पब्लिक स्पीक। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

रात्रि 10 बजे सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग इसकी समाप्ति तक। ये प्रसारण भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। दिन के 12:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आज मोहम्मद बिंदु खां के गाए कुछ

श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे मोहम्मद बुंदू खां के गाए कुछ लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक बार आपको हम पुनः याद दिला दें, आज रात 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग। कार्यक्रम की समाप्ति तक इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बेताब, बोल के हैं आनंद बख्शी ने, संगीत आर डी बर्मन का है।

लगान फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण, सुखविंदर, शंकर, शान और किशोरी की आवाज़ों में। बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत ए आर रहमान का है।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडेकर और अनुपमा देशपांडे की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है चांदनी, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत शिवहरी का है।

0: चांदनी फिल्म में अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर और अनुपमा देशपांडे को। इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे को लेकर दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक पेश किए गए। बाद में विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए गृहमंत्री

0: बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेलो इंडिया की गरिमा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। भारोत्तोलक मीराबाई चानू से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी विजय भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से भी इस अवसर पर उपस्थित थे। भारत ने 23 जुलाई से इस महीने की 2 तारीख तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में 4th स्थान हासिल किया है। भारतीय खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते। आज विश्वभर में शेर दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्यजीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। उन्होंने कहा कि ये वृद्धि वन अधिकारियों, संरक्षणवादियों, स्थानीय समुदायों और इस प्रजाति की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे लोगों के समर्पण को दर्शाती है। उन्होंने सभी से प्राकृतिक विरासत की रक्षा करने और ये सुनिश्चित करने के संकल्प को दोहराने का आग्रह किया कि एशियाई शेर की दहाड़ आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि शेर हमारी समृद्ध जैव विविधता, प्राकृतिक संतुलन और वन्यजीव विरासत का महत्वपूर्ण आधार है। इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए भावी पीढ़ियों को संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। सीकर और झालावाड़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। नीमका थाना में 90 मिलीमीटर, मनोहर थाना में 80 और शाहबाद में 50 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बरसात की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। 10 और 11 अगस्त को कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। बारिश का दौर 13 अगस्त तक जारी रहने का अनुमान है। इसके बाद 14 अगस्त से पश्चिमी और 15 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बारिश में कमी आने की संभावना है। दूदू में आज RUIDP संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के 5वें चरण के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर पंचायत समिति सभागार में ये संवाद कार्यक्रम रखा गया है। इसमें जनप्रतिनिधियों, पूर्व पार्षदों, अधिकारियों, प्रबुद्ध जन और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव और फीडबैक लिए जाएंगे। दूदू शहर में करीब 2,78,00,000 रूपये की लागत से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, विरासत संरक्षण और पर्यटन विकास से जुड़े कार्य प्रस्तावित हैं। पाली जिले के 3 आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन मिला है। CMHO डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि राजोला कला, लुणावा और भारुंदा के स्वास्थ्य केंद्रों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये प्रमाणन मिला है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ और दूरदर्शन के DTH चैनल पर भी। श्रोताओं, जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। इसके साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल एप्लीकेशन News1AIR और हमारी वेबसाइट News1AIR.com पर भी लाइव सुन रहे हैं।

और विनोद राठौड़ की आवाजों में। फिल्म का नाम है बाजीगर। शब्द रचना जफर गोरखपुरी की है और संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं गुरु फिल्म का गाना। बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत ए आर रहमान का है।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है नदीम शर्मा ने, और फिल्म का नाम है रंग।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन और साधना सरगम की आवाजों में। फिल्म का नाम है दह

हरिहरन की आवाज में आप सुन रहे थे दहक फिल्म का गाना। इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम पणिहारी।

0: ऊर्जारी बात आज आपा करा निराली। ऊर्जा की जब निराली बात की बात आ रही है तो आज आपा मना रहे हां विश्व जैव ईंधन दिवस। पेड़ावा आपनी जो रोजमर्रा की जिंदगानी है भी मैं ऊर्जा को घणो ही महत्व है। घर की रसोई सुलेर खेता में चाल बाला जो कृषि यंत्र है, उद्योग धंधा व्यापार है, परिवहन, हर जगह ईंधन की बहुत ही आवश्यकता हुआ करे है। और जब ऊर्जा की खपत इतनी होवे है तो ई को सीधो सीधो असर अपना पर्यावरण पर होवे है। ऐसी स्थिति का मायने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विकल्प है जैव ईंधन वो आपने सामने आवे है। अब आप केवला सा कि यो जैव ईंधन काई होवे है तो जो अपना पेड़ पौधा है, जो अपना अवशेष है यानी कि कृषि अवशेष है, कचरो है, जैविक पदार्थ है या कुछ अन्य प्राकृतिक स्रोत, यहाँ से प्राप्त हो वालों जो ईंधन है बिना आपा के वहाँ जैव ईंधन, बायो एथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस ई का प्रमुख उदाहरण है। किसान जद खेतासु फसल ले लेवे है यानी कि किसान के तई जैव ईंधन को जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेता से फसल कटाई के पचे जो अवशेष बचे है वो जैविक अवशेष को आपा उचित उपयोग कर सका हाँ, यानी कि कचरा को बेहतर प्रबंधन आपा कर सका हाँ और ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा को वैकल्पिक स्रोत आपा विकसित कर सका हाँ। भारत में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ने बढ़ावो देबा की दिशा में काम हुई है और गन्ना और अन्य कृषि स्रोतासु बनवालो जो इथेनॉल पेट्रोल है वी को भी उपयोग करो जा रो है। इसु आयतित पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होसी और ऊर्जा का जो वैकल्पिक स्रोत है बी ने विकसित करवाने मदद मिलसी। तो आपने करनो काई है कि जैव ईंधन को जो इस्तेमाल है वे को सोच समझ कर करनो है, यानी कि जैव ईंधन जो आपा उपयोग में ले रहे हाँ ई को जो उपयोग है वो सतत कृषि संसाधना को सही उपयोग और पर्यावरण का संरक्षण में काम आ रो है। कि खेतासु जो अवशेष बचे है, खेतासु जो अवशेष बचे है उनमें भी कुछ खास होवे है, पराली हो या गोबर की खाद प्रकृति देवे है ऊर्जा रो प्रसाद, ऊर्जा भी हो पर्यावरण भी बचे, आबाड़ा काल रा सपना भी सजे, धरती माँ को आंचल भी हरियो भरियो रेवे और हर घर गांव आंगन और शहर खुशियां सु बस्यो रेवे, यानी कि आपाने जो ईंधन है ऊर्जा है वी को सोच समझर उपयोग करनो चाहिए। भाई या तो बात हुई विश्व जैव ईंधन दिवस की जो आज आपा मना रहे हाँ, तो आपने यो संकल्प भी लेनो चाहिए सागे सागे ई दिन ने मनाबा के साथ ही कि आपा जो ऊर्जा है वी को आपा सुरक्षित उपयोग कराला। बेणावा जद आपा कोई खास व्यक्तित्व की बात करा हाँ या कोई खास मिनक की जद आपा बात करा हाँ तो अक्सर आपा काई करा हाँ और भाई वो तो सिंह की सी जियां गाजे है या वो तो भाई भी की तो चाल ही बहुत सिंह की जियान है। कि गिर का जंगल की शान है, भारत की पहचान है, जी की धार सु गूंजे वन वो ही आपनी आन है। अब आप समझे मैं कीरी बात कर रही हूँ। बिल्कुल आज आपा विश्व जैव ईंधन दिवस के सागे सागे एक और दिन मना रहे हैं जो कि बहुत ही खास है। मैं बात कर रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय सिंह दिवस की। आज आपा मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सिंह दिवस, यानी कि हर साल आपा 10 अगस्त ने यानी कि आज के दिन यो खास दिन यानी कि वर्ल्ड लॉयन डे आपा मनावा हाँ। भाई जो शेर है ना वो खूबसूरत तो है ही, शक्तिशाली वन्य जीव भी है, पर यो आपनी पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण हिस्सा है। जंगल में शिकारी जीवा की भूमिका में ले लियो या खाद्य श्रृंखला की तौर पर वन्य जीवा की जो आबादी है विकास संतुलन से जुड़ी बात अगर आपा करा तो ई कमाई ने सिंह को एक खास महत्वपूर्ण योगदान है। भाई देखो बात चिता आपा और भी करा ला, पर देखो सावन को महीनो चाल रो है, अगर क्यों ना एक चोखो सो गीत आपा सुन लिया तो कियान की रेवे बात। मैं आपका मन री बात सगली की समझ रही हूँ। सगली भेणा जब दोपहर में पणिहारी सुने हैं तो जानकारी के सागे सागे गीत संगीत भी जरूर सुने हैं और प्रफुल्लित हुए है। तो लियो सुना एक चौकू सु गीत और वी से पहली सुन लिया संदेश।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

भाई यो खूब सुरसो गीत सुनर आप सगड़ाई खूब खुश हुआ उसी और खुश हो भी क्यों नहीं, क्योंकि महीनों ही सावन को है और सावन का महीना में चारों कानी हरियाली हरियाली और इतनी ही हरियाली आपने सबका मना में भी छाए रे वे है। भाई आज की आप खास बता कर ली, अब आप थोड़ी सी बात कर लिया काल रे दिन की। काल आप मना रहे हाँ विश्व स्टील पेन दिवस। भाई जो आप आबार गीत संगीत सुनया तो यानी कि सर ले ताल यहाँ से मिलर ही संगीत बने हैं। सोचो अगर ये गीत का मायने इतना सारा वाद्य यंत्र नहीं बजता और आपने रिदम नहीं मिलती ताल नहीं मिलती तो ये गाना बिल्कुल सुनो सुनो सो लागतो। तो भाई आपने ठे जिया तबलो ढोलक मृदंग खंजरी ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है जो वाद्य यंत्र है बिया ही जो स्टील पेन है यो आपनों पाश्चात्य संस्कृति को एक वाद्य है और यो जो वाद्य है वो संघर्ष की सृजन की और सामुदायिकता की कहानी आपने बतावे है। ई वाद्य यंत्र के पाछे जो पाश्चात्य संस्कृति का मायने एक किंवदंती है कि भट्टे का जो कुछ कुछ एक समुदाय हा जाने कोई जो बड़ा बड़ा वाद्य यंत्र हा बजाबा की बाने अनुमति कोनी ही तो वे कुछ छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट लिया यानी कि कोई साधारण चीज़ा से कला का रूप में कुछ वाद्य यंत्र ने बजाया ताल को वे आविष्कार करया एक तरीके से मतलब जो ताल को पर बजाया तो वो वाद्य यंत्र यानी कि स्टील पेन का रूप में ई दिन ने मनाया जावे यानी कि संसाधन चाहे से साधारण हो लेकिन प्रतिभा और कल्पना उन्हें असाधारण बना देवे है यानी कि साधारण सी वस्तु जब कलाकार का हाथा में पहुँचे हैं तो संगीत का माध्यम से वह एक बहुत अद्भुत

0: अभिव्यक्ति मर जावे है, और यह जो अद्भुत अभिव्यक्ति है यही आपा संगीत का माध्यम से करना है। तो स्टील पेन का बारे में और ज़्यादा आपा ई दिवस का बारे में जाना, आपा जुड़ रहे हैं गार्गी सक्सेना के सागे।
1: भारत में संगीत बहुत खास होता है। यहाँ लोग संगीत को सिर्फ गाने या बजाने का काम नहीं मानते, बल्कि इसे पूजा, ध्यान, आत्मा की शांति करने वाला साधन समझते हैं। हमारे देश में भजन, कीर्तन, शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, ये सब जीवन का हिस्सा हैं। जैसे बांसुरी की मधुर आवाज़ श्री कृष्ण से जुड़ी है, वैसे ही तबला और सितार भी हमारे संगीत की पहचान है। भारत की सांस्कृतिक परंपरा में संगीत का विशेष स्थान है। संगीतम ब्रह्मा रूपम, यह मंत्र दर्शाता है कि संगीत को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। प्राचीन काल में संगीत वेदों का हिस्सा था। सामवेद को संगीत का मूल कहा गया है। भारत में संगीत को मुक्ति का मार्ग माना गया है, इसलिए इसे साधना उपासना का माध्यम भी बनाया गया है। हमारी परंपरा में तानसेन, स्वाति तिरुनाल, पंडित भीमसेन जोशी जी, MS सुबुलक्ष्मी जैसे महान कलाकारों ने संगीत को साधना का रूप दिया है। संगीत केवल ध्वनियों का समूह नहीं, बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह मनुष्य की आत्मा को स्पर्श करता है। संगीत तीन अंगों से मिलकर बना है। गायन, यह स्वर आधारित होता है। दूसरा वादन, वाद्य यंत्रों के माध्यम से। तीसरा नृत्य, लय एवं गति से व्यक्त होता है। संगीत न केवल मनोरंजन है, बल्कि चिकित्सा, ध्यान केंद्रित करने और सामाजिक समस्ता के लिए भी उपयोगी है। आधुनिक अनुसंधानों में पाया गया है कि संगीत से तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं। पहला तंतुवाद्य, जैसे सितार, संतूर। दूसरा अवनद्य वाद्य, जैसे तबला, मृदंग। तीसरा सुशीर वाद्य, जैसे बांसुरी, शहनाई। आजकल नए वाद्य भी आ रहे हैं, जैसे गिटार, कीबोर्ड और अब स्टील पैन। चौथा घन वाद्य, जैसे झांझर, घड़ियाल। इनके बिना कोई भी गीत अधूरा लगता है। दूसरे देशों में भी संगीत बहुत मजबूत है, पर उनका तरीका अलग होता है। वहाँ गिटार, पियानो, ड्रम्स और सांस ज़्यादा चलते हैं। वहाँ एनर्जी और बीट पर जोर होता है। नाचने वाले गाने में ये सांस बहुत काम आते हैं। इन्हीं में से एक सांस है स्टील पैन। स्टील पैन एक ढोल जैसी चीज़ से बनता है। पुराने स्टील के ड्रम को हथौड़े से पीटकर उसमें अलग अलग सुर बना दिए जाते हैं। इसे दो छोटी छोटी लकड़ी की छड़ियों से बजाया जाता है। इसकी आवाज़ मीठी और गूंजदार होती है। इसमें डोरेमी जैसे पाश्चात्य स्वर बजाए जाते हैं। इसे खड़े होकर या झुककर भी बजाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 11 अगस्त को विश्व स्टील पैन दिवस घोषित किया गया है। ये वाद्य त्रिनिदाद और टोबैगो नाम के देश में बजाया जाता है। वहाँ किसी कारणवश गरीब लोगों को जब ढोल बजाने से मना कर दिया गया, तो उन्होंने पुराने तेल के ड्रम से ये साज बना लिया। अब यह वाद्य पूरी दुनिया में बजाया जाता है, जैसे स्कूलों में, मंचों पर, संगीत समारोह आदि में। यह दिन उन लोगों की मेहनत और रचनात्मक सोच को सम्मान देने का दिन है। सच कहे तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए हमें संसाधनों की नहीं, अपने मन की शक्ति की आवश्यकता होती है। भारत में अभी यह वाद्य बहुत ज़्यादा नहीं फैला है, लेकिन कई संगीत संस्थान इसे अपनाने लगे हैं। बच्चों को लय सिखाने में यह बहुत काम का है। यह दिखने में अनोखा है और सुनने में मीठा, तो बच्चों को जल्दी पसंद आता है। इसमें एक तरह से पश्चिमी और भारतीय संगीत को जोड़ने की ताकत है। हम ये कह सकते हैं कि चाहे वाद्य भारत का हो या विदेश का, अगर वो मन को शांति देता है और लोगों को जोड़ता है, तो वो हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्टील पैन हमें यह सिखाता है कि कम साधनों में भी बड़ी रचना हो सकती है। स्टील पैन हमें यह सिखाता है कि साधारण वस्तु से भी कलात्मक चमत्कार किया जा सकता है। संगीत एक ऐसा माध्यम है जो संस्कृति, भाषा और सीमाओं को लांघकर लोगों को जोड़ता है। विश्व स्टील पेन दिवस न केवल एक वाद्य यंत्र का उत्सव है, बल्कि ये मानव रचनात्मक संघर्ष और एकता का प्रतीक है। हमें न केवल भारतीय संगीत पर गर्व होना चाहिए, बल्कि वैश्विक संगीत की विविधता को समझना और स्वीकार करना भी जरूरी है। संगीत भाषा जाति देश की सीमाओं से परे एक विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करता है। स्टील पैन भले ही एक छोटा सा वाद्य हो, लेकिन इसकी आवाज़ विश्व को जोड़ने का कार्य कर रही है। हमें अपने संगीत को, संगीत की जड़ों को समझते हुए ऐसे वाद्य यंत्रों को भी स्वीकारना चाहिए जो हमें वैश्विक संस्कृति से जोड़ते हैं। भले ही स्टील पेन विदेशी वाद्य है, लेकिन भारत जैसे संगीत प्रेमी देश में इसे अपनाया जा रहा है। यह यंत्र बच्चों को संगीत की मूल बातें सिखाने में भी सहायक है। यह संगीत के वैश्वीकरण और संस्कृति के आदान प्रदान का प्रतीक बन चुका है। यह वाद्य उनके उपनिवेशकालीन इतिहास से जुड़ा है, जबकि अफ्रीकी मूल के लोग परंपरागत वाद्य बजाने से वंचित थे। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्टील ड्रम्स का सहारा लिया और एक नया वाद्य यंत्र बना डाला, स्टील पैन।
0: और चलता चलता अब आपा बात कर लिया खुदीराम बोस बलिदान दिवस की, जो कि आपा काल के दिन यानी कि हर साल 11 अगस्त ने मनावा हाँ। 11 अगस्त 1908 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास में यो एक अविस्मरणीय दिन है। ये दिन खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर जेल का मायने फांसी दी गई ही और बाकी उम्र वीटेम मात्र 18 साल की ही। खुदीराम बोस को जन्म 3 दिसंबर 1889 में बंगाल का मिदनापुर जिला का हबीपुर गांव में हुई हो और बचपन सुई भाका मन में देश के प्रति गहरो प्रेम हो। उ दौर का मायने भारत पर अंग्रेजा को शासन हो। वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड ने निशानों बनावा की योजना बनाई गई। ये प्रयास के मायने खुदीराम बोस गिरफ्तार हो गया और वहाँ के विरुद्ध मुकदमो चालियो और बाने मृत्युदंड दियो गयो। यानी कि भारत के मायने जो महान शख्सियत है, बाकी कमी कोने, देश प्रेम का जो सेनानी है, वे शुरू से लेके आज तक भी अपनी मातृभूमि में जन्म रहा है। तो अशा जो योद्धा है बाने आप शत शत नमन करा और यो संकल्प लेवा कि आप भी देश प्रेम के प्रति अपना मन में जागृति रखला और लोगों में भी यह जागरूकता फैलावला। तो खुदीराम बोस ने आपा करा शत शत नमन और एक साथ ही आपा सुन लिया एक चौको सो गीत कार्यक्रम में और पहले सुन लिया संदेश।
2: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
3: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
4: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

और देखो जानकारी भी आपा ले लिया, बातचीत खूब कर लिया और गीत संगीत भी सुन लिया। और भेणावा आपसे बात करता था कई पणिहारी कार्यक्रम में, अब मने दो आज्ञा, चाला और करा राम राम सा।

0: the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. Mr. Modi emphasized that prestige is not gained merely by cutting ribbons, but by playing with the spirit of a young student or an aspiring athlete.
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है
0: The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and West Madhya Pradesh for the day. In Himachal Pradesh, intermittent rain has been continuing across most parts of the state this morning. More than 100 roads have been disrupted in several parts of the state due to landslides triggered by heavy rainfall. A report.
2: The monsoon has once again become active in Himachal Pradesh with intermittent light rain being reported from several areas including the state capital Shimla. According to the Meteorological Center Shimla, an orange alert for heavy rainfall has been issued for four districts of the state today, Kangra, Sirmaur, Mandi and Kullu. In view of the weather warning, people have been advised to exercise caution and stay away from rivers and streams. Meanwhile, landslides caused by heavy rainfall have disrupted traffic on more than 100 roads across the state. As many as 255 electricity transformers and around 20 drinking water supply schemes have also been affected. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: In Odisha, IMD has forecast formation of a fresh low-pressure area over the northwest Bay of Bengal around the 13th of this month. A cyclonic circulation is likely to form around tomorrow, bringing another spell of rainfall to the state. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appeals to opposition to allow Home Minister Amit Shah to make his statement and respond to issues raised by members without any disruption. Four bills, including Tribunals Reforms Bill 2026, introduced in Lok Sabha. Bill aims to improve transparency and efficiency in functioning of tribunals. Protesting students begin their march towards Jharkhand Assembly over alleged irregularities in recruitment examinations. Har Ghar Tiranga movement gains momentum as Tiranga rallies organized across the nation. Over 10 lakh people evacuated as Typhoon Dolphin batters parts of eastern China. World Lion Day being celebrated today, Prime Minister Narendra Modi says India's scripted successful conservation journey from 523 lions to 891 in last 10 years. And with that, we end the midday news.
3: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, तीन अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
4: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे।

0: पार्टी से ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
3: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कही मांग है कि सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
1: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
4: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सब का राइट है, सत्याग्रह हम सब की ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
1: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
4: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर

0: परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
2: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम में 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: और लीजिए अब सुनिए राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सीमा मिश्रा के गाए कुछ लोकगीत।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं राजस्थानी लोक संगीत और आज इस कार्यक्रम में हमारी कलाकार हैं सीमा मिश्रा।

श्रोताओ, राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सीमा मिश्रा के गाए कुछ लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आइए आप सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का ये पहला नगमा आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है वक्त की आवाज़, बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत बप्पी लहरी का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की युवा सुरों में। फिल्म का नाम है आई मिलन की रात। आनंद मिलन का संगीत है और बोल लिखे हैं समीर ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। सुलक्षणा पंडित और अनवर की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं थोड़ी सी बेवफाई। इस फिल्म का गाना शब्द रचना गुलजार की है और संगीत खय्याम का।

और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में जैसे को तैसा, इस फिल्म का गाना।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 3:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही विनम्र होकर झुक जाता है और सफलता भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच, निरंतर मेहनत और धैर्य से ही मिलती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। आप हमारे चिर परिचित श्रोता हैं, लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी आपको प्यार भरा नमस्कार। हमें दिनांक 21/7/2026 और 22/7/2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया। आगे आपने लिखा है,
2: जिसमें आपने ये भी जानिए के तहत भारत के अनूठे मेलों की जानकारी दी। इसमें आपने असम और नागालैंड के मेलों की जो दुर्लभ जानकारी दी वो हमें बेहद पसंद आई
3: जी।
2: दिनांक 22 जुलाई 2026 के ही प्रसारण में आपने सुंदरिया की कहानी सुनाई, वो भी हमें बेहद पसंद आई। ऐसा लगा मानो पूरा दृश्य आंखों के सामने दिख रहा हो। बहुत अच्छी कहानी थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक शिकायत भी है हमारा संदेश प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जाने की। कोई नाराजगी है तो माफ करें।
3: तो राजेश जी आपको कहना चाहते हैं, कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, हमने आपका संदेश आज के प्रसारण में सबसे पहले शामिल कर लिया
2: जी। हाँ। कुलगांव जम्मू कश्मीर से मोहम्मद असलम मीर
3: और राजा जी नगर बेंगलोर से हमारे चिर परिचित श्रोता NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने लिखा है,
2: अजीत जी विमलेश जी, मिट्टी की पुस्तकों से भोजपत्र से लेकर तालपत्र और ई पुस्तकों तक, पुस्तकों पर आधारित ये विषय सुनना वाकई शानदार था। वास्तव में आपकी चर्चाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि हमें ऐसा लगा मानो हम उन्हें ई पुस्तकों से ही पढ़ रहे हों
3: जी।
2: आपके वर्णन करने का तरीका और उन्हें सरल भाषा में समझाना बहुत ही बढ़िया था।
3: बहुत बहुत धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी, आपको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे जी का और साथ में वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी का।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया?
2: ये नारा दिया था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने।
3: हमारा दूसरा प्रश्न था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। AI के आविष्कार का श्रेय जाता है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को।
3: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, मेघालय के मावली नोंग गाँव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, क्यों?
2: इसका उत्तर है, मावलीनोंग गांव के पास जो पुल है वो जीवित पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है, इसलिए इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है।
3: तो श्रोताओं, प्रश्नोत्तरी में आप सबकी प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
3: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक को डाउनलोड कीजिए।
3: जी हाँ, और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
2: तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम,
3: वीर कुंवर सिंह।
2: ये कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी देशभक्त राजा वीर कुंवर सिंह के जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी वीरता की गाथा प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने बिहार के शाहाबाद में गंगा नदी के तट पर अंग्रेजों से लोहा लिया।
4: हमका सिपाहियों के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जला डालो।
5: '1857 भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
6: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड?
5: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
7: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
8: सुना तुमने?
9: क्या?
8: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
9: हैं?
8: अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
9: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
8: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली की मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
9: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
5: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
10: बड़ बहादुर वाह हरकिशन वाह। अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे। अरे का हो, अब हमार कुंवर सिंह का करें?
11: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गईल बा, कभो कुछ हो सकेला। हाँ,
12: चाहिए कि जिसके बारे में जान
8: हुजूर अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है। अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं। हमें क्या आदेश है?
12: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है। सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपकी क्या राय है?
9: भैया, सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है। अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
12: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
8: जी हुजूर,
12: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिलें।
8: जी हुजूर।
12: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
7: छब्बीस जुलाई 1857, आरा में कुंवर सिंह की कोठी। चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
12: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काट कर फेंक दें। आप सब ने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं। इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए। सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है। शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
13: कुंवर सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, हरकिशन सिंह जिंदाबाद, कुंवर सिंह जिंदाबाद, रंजीत राम जिंदाबाद।
7: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा। सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
14: साथियों, आप सबने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है। उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं है। हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ से दब गए हैं। अब जंग शुरू होती है। कुंवर सिंह
13: जिंदाबाद,
14: कुंवर सिंह
13: जिंदाबाद,
14: भारत माता की
13: जय,
14: भारत माता की
13: जय।
7: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
5: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर आयर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची।
14: कुंवर सिंह
13: जिंदाबाद!
14: कुंवर सिंह
13: जिंदाबाद!
14: भारत माता की
13: जय!
14: भारत माता की
13: जय!
5: लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
15: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने

0: कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं।
1: आमीन। खुदा आपकी मुराद पूरी करे।
0: हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
2: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसान मंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।
3: कुंवर सिंह जिंदाबाद! कुंवर सिंह
4: जिंदाबाद!
3: भारत माता की
4: जय!
3: भारत माता की
4: जय!
5: ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुईं। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

0: अतरौलिया का मैदान सिपाहियों के खून से लथपथ हो गया। छब्बीस मार्च को मिलमैन को पराजित करते हुए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ और अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया।
1: आजमगढ़ पर विजय के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने लगे। रास्ते में ब्रिगेडियर डगलस की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। ब्रिगेडियर डगलस की हार हुई। अंग्रेजी सेना फौजी सामान छोड़कर भाग गई। दूसरी ओर जनता ने राजा कुंवर सिंह का स्वागत किया।
2: अरे देखो देखो, अरे घोड़े पर सवार होकर हमारे राजा कुंवर सिंह कैसे जा रहे हैं।
1: कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे पर डगलस ने उनका पीछा जारी रखा। कहा जाता है शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते हुए राजा कुंवर सिंह की दाहिनी बांह में गोली लगी, जिसे बाएं हाथ की तलवार से काट कर उन्होंने गंगा में बहा दिया।
3: लो मां गंगे, आज तुझको ही देता हूं ये।
1: दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार। गोली आकर लगी बाह में, दाया हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ, आज तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जाह्नवी को मानो नजराना था। सब

0: कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।
1: कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
2: ओह माय गॉड, देखाओ शाहबाद खबर करो कि कुंवर सिंह नदी पार कर गया है।
3: यस सर।
1: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोकगीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह, और आइए अब सुनते हैं ओज और वीर रस से परिपूर्ण सुंदर कविता वीर तुम बढ़े चलो।
1: हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों और युवाओं को साहस, संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां और प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हों।
0: जी,

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वीर तुम बढ़े चलो। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

हलचल फिल्म में आप सुन रहे थे उदित नारायण और सुजाता की आवाज़ें, और अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज़ में, इनके साथ दिया है अनुराधा पौडवाल ने। फिल्म का नाम है फूल और कांटे, बोल लिखे हैं रानी मलिक ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं जिसे लिखा है नीरज ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ है लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है लव। इसे गाया है SB बाला सुब्रमण्यम ने और चित्रा KS ने। बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत आनंद मिलिंद का है।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अलका याग्निक और अभिजीत की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं बादशाह फिल्म का गाना। शब्द रचना समीर की है और संगीत अनु मलिक का।

ये गाना आपको सुनवा रहे हैं जिसमें आवाज़ दी है यशुदास और अनुराधा पौडवाल ने। फिल्म का नाम है प्यार भरा दिल।

अनुराधा पौडवाल और यशुदास की आवाज़ों में आप सुन रहे थे प्यार भरा दिल, इस फिल्म का गाना। श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमिर चैनल से।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में आइए सुनते हैं एतराज़ फिल्म का गाना। बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत हिमेश रेशमिया का है।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म से। इसे गाया है सुरेश वाटिकर और लता मंगेशकर ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में आपको सुनवा रही है कार्यक्रम का अगला गाना। ये है फिल्म अनाड़ी, बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत आनंद मिलिंद का।

और श्रोताओं, ये है कार्यक्रम का आखिरी नगमा। इसे हमने लिया है फिल्म घर घर की कहानी से। आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़ और अरुमा देश पांडे की। बोल लिखे हैं इंदीवर ने और संगीत बप्पी।

अनुपमा देशपांडे और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में आप सुन रहे थे घर घर की कहानी फिल्म का गाना। इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स और दूरदर्शन के DTH चैनल पर। श्रोताओं, जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। इसके साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन रहे हैं।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे शूल न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जी हाँ, हम लोग बहुत सी ऐसी परिस्थितियों में कभी कभी गिर जाते हैं जहाँ हम सोचते हैं कि कौन सी तरफ जाएं, किस तरफ नहीं जाएं। बहुत सारे रास्ते हमें

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100।

0: मुद्दों पर और पाए समाधान।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं युववाणी कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से। दोस्तों शेर का नाम तो हम सब ने सुना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एल फॉर लॉयन। आज आप जानते हैं 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य शेरों की घटती आबादी, उनके संरक्षण यानी कि उनके कंजर्वेशन और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2013 में बिग कैट रेस्क्यू द्वारा। भारत की अगर बात करें तो एशियाई शेर मुख्य रूप से गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में और सौराष्ट्र में पाए जाते हैं। शेर को ताकत, साहस और वन्य जीव विरासत का एक प्रतीक माना जाता है, जो हमारे इकोसिस्टम को संतुलित रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज हम सब मना रहे हैं ये शेर दिवस और यानी कि वर्ल्ड लायन डे। तो सिर्फ इसका उद्देश्य यही है कि इनका शिकार ना किया जाए और जितनी खूबसूरती इनकी जंगलों में पाई जाती है उतनी इनकी शिकार करने में नहीं। तो आप बने रहिए हमारे साथ युववाणी कार्यक्रम में ऐसी ही और भी दिलचस्प बातों के साथ।

दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि रास्ते मुश्किल हैं और मंजिल बहुत दूर। लेकिन याद रखिए, मुश्किल रास्ते ही अक्सर खूबसूरत मंजिल तक पहुंचाते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा आत्मविश्वास होता है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो असफलता भी हमें रोक नहीं सकती। असफलता दरअसल अंत नहीं है, बल्कि सीखने और दोबारा बेहतर तरीके से शुरुआत करने का अवसर होती है। इसलिए अगर आज आपके सामने कोई चुनौती है, कोई बड़ी बात खड़ी हुई है, तो उससे आप घबराइए नहीं। छोटे छोटे कदम उठाइए, लगातार प्रयास करिए और अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए। और इसके अलावा दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करिए। याद रखिए, हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। तो आज खुद से एक वादा ज़रूर करिए कि हार नहीं मानेंगे, रुकेंगे नहीं और अपने सपनों को लगातार बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो मुश्किलों के बावजूद भी आगे बढ़ते रहते हैं।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। बारिश का मौसम है, सावन तो आ ही चुका है। बारिश की पहली बूंदें धरती को भिगोती हैं, मौसम में ठंडक घोलती हैं और मन को भी जैसे खुशी से भर देती हैं। छत पर गिरती बूंदों की आवाज़, मिट्टी की सौंधी सी खुशबू और चाय की प्याली, साथ में पकौड़ी, बारिश का अपना ही आनंद होता है। लेकिन यही बारिश अगर लापरवाही के साथ हो तो बीमारियों को भी न्योता दे सकती हैं। बारिश में भीगने के बाद लंबे समय तक अगर गीले कपड़ों में रहते हैं तो शरीर को असहज महसूस होता है। इसलिए भीगने के तुरंत बाद आप सावधानी रखें, यानी कि अपने कपड़े बदलें और शरीर को अच्छी तरह से सुखाएं। इसके अलावा अपनी गली में या अपने घर में गंदे या जमा किए हुए पानी के कारण मच्छरों की संख्या अगर बढ़ती है तो उसे भी आप साफ करें, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा ना बढ़ सके। घर के आसपास पानी ना जमा होने दें और मच्छरों से बचाव के भी उपाय अपनाएं। बारिश का मौसम यूं तो बहुत ही खुशनुमा होता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर थोड़ी सी सावधानी रखें तो यही मौसम हमें आनंदित भी करता है। इस मौसम में हमेशा साफ पानी पिएं और खाने को भी हमेशा ढक कर रखें। बाहर की खुली हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएं और जितनी भी हो सके आप हमेशा अपने खुले हुए कपड़े पहनें और साफ सूती वस्त्र पहनें। और इसके अलावा खाने की बात है तो बाहर के खाने को आप अवॉइड करें और घर का पौष्टिक और सीजनल सब्जी ही खाएं। इस मौसम में पेट संबंधी इन्फेक्शन भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, तो बारिश का मज़ा आप लीजिए लेकिन सावधानी के साथ। भीगे हुए तन को सुखाइए, मन को खुश रखिए और बीमारी को खुद से दूर रखिए।

मेरे हमदम मेरे दोस्त, आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। श्रोताओं, प्रोग्राम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं नया दौर फिल्म से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत लोफर फिल्म से। और अब अगला गीत निकाह फिल्म से, आवाज़ है सलमा आगा की।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे नया जमाना फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप पुनः सुनिएगा शाम 6:05 पर। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। फिलहाल हम आपको कार्यक्रमों की रूपरेखा में हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे हैं।

0: श्रोताओं, शाम 7 बजे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा ग्राम भारती, जिसमें आज सुनिएगा बातचीत प्रधानमंत्री कुसुम योजना पर। इस योजना पर जानकारी देंगे डॉक्टर बनवारी लाल यादव। इस कार्यक्रम में आप मौसम की जानकारी, बाजार भाव की जानकारी, साथ ही लोक संगीत का आनंद भी ले पाएंगे। किसान भाइयों के लिए ही हमारा कार्यक्रम होता है खेतीबाड़ी। ये कार्यक्रम होगा शाम 7:30 पर। आज सुनिएगा डॉक्टर लक्ष्मण सिंह से की गई बातचीत। विषय रहेगा वर्षा ऋतु में सब्जी उत्पादन। श्रोताओं, संसद समीक्षा सुनिएगा रात 8 बजे। रात 9:30 पर सुनिएगा प्रोग्राम पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संसद समीक्षा भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। श्रोताओं, दिल्ली केंद्र से हम रात 10 बजे संसद में हुए प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग भी आपको सुनवाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात 10:30 पर, रात 8:15 पर और थोड़ी देर बाद शाम 6:05 पर। श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं।
1: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स, साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। इन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बहिस्साक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुए कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेगा तब

सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं आइए एक बार फिर से सुनते हैं फिल्म संगीत। ये गीत है उदित नारायण का गाया हुआ, फिल्म का नाम है डर।

और अब अगला गीत फिल्म पीके से, आवाज़ें हैं शान और श्रेया घोषाल की।

सुन रहे थे दनादन फिल्म का ये दो गाना जावेद अली और बनी योत्सना की आवाजों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद यानी 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी प्रसारित होगी और फिर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। पहले सुनिए ये संदेश।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: अरे बहू,
1: ये तुम्हारे नाम।
0: इतनी भी क्या जल्दी थी?
1: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी, आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
6: क्या
7: RBI कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में जारी गतिरोध पर चिंता जताई, कहा सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा आवश्यक। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा सरकार का पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का कोई विचार नहीं। प्रदेश में अब तक 87 लाख से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी बनाई गई। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता बरकरार, हालांकि 19 जिलों में अब तक सामान्य से कम पानी बरसा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की है। श्री बिरला ने आज संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन में जारी गतिरोध पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों पर सदन में चर्चा होना आवश्यक है, इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। आज संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि गृह मंत्री सदन में इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखेंगे। श्री रिजिजू ने विपक्ष से इस दौरान किसी तरह का शोर शराबा नहीं करने की अपील की।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री गोपी ने बताया कि इस बारे में भविष्य में कोई भी निर्णय वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययनों तथा ऑटोमोबाइल निर्माताओं और तेल विपणन कंपनियों से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। 16वीं विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू होने वाले 6ठे सत्र के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने सत्र संबंधी विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए आज बैठक की। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में विधानसभा परिसर में आगंतुकों के प्रवेश, सुरक्षा जांच तथा निर्धारित पार्किंग स्थलों और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा है कि एक राज्य एक चुनाव से आर्थिक बचत और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इससे राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता तथा चुनाव के दौरान पारदर्शिता रखने में सहायता मिलेगी। श्री सिंह ने प्रदेश में होने वाले आगामी नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के

0: चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि समय पर चुनाव कराने के लिए व्यापक प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश वर्मा ने बताया कि 39 जिलों में नगर निकाय चुनाव दो चरणों में तथा फलौदी और सलुम्बर में एक चरण में करवाए जाएंगे। इसी तरह पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 36 जिलों में चार चरणों, चार जिलों में दो चरणों और जैसलमेर जिले में एक चरण में होंगे। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर निकाय सदस्यों के लिए ईवीएम से मतदान होगा, वहीं पंच और सरपंच का चुनाव मत पत्रों से होगा। विभिन्न देशों के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का दल इन दिनों उदयपुर में है। इस दल के सदस्य 16 अगस्त तक राजस्थान के विभिन्न स्थलों का भ्रमण कर यहां की सांस्कृतिक विरासत को सोशल मीडिया पर दिखाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय के विशेष कार्यक्रम के तहत 18 देशों के 32 क्रिएटर्स कल राजस्थान पहुंचे। सबसे पहले ये झीलों की नगरी उदयपुर के विभिन्न स्थलों पर रील्स, ब्लॉग्स और वीडियो बना रहे हैं। ये पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्प को करीब से जानेंगे, साथ ही स्थानीय कारीगरों से भी बातचीत करेंगे। इनका चित्तौड़गढ़ और गुलाबी नगर जयपुर भ्रमण का भी कार्यक्रम है। ये दल जयपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल होगा। इस प्रयास से राजस्थान की संस्कृति को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान मिलेगी। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में अब तक 87 लाख से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 97% है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में एग्री स्टेक स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एग्री स्टेक संबंधी काम पूरे करने पर राजस्थान को अब तक 737 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मंजूर की गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि एग्री स्टेक का उद्देश्य डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है। इससे किसानों को उनकी जमीन, फसल और कृषि सेवाओं की जानकारी एकीकृत और आसान तरीके से मिल सकेगी। बैठक में कृषि विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि राजसमंद और सिरोही में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल लागू किया जा चुका है। उर्वरक खरीद में सुगमता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा है कि राजकीय विभागों की खरीद प्रक्रिया में राजीविका उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने इन उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए मार्केट रिसर्च, गुणवत्ता, लॉजिस्टिक और तकनीकी सहयोग पर जोर दिया है। आज सचिवालय में एक बैठक में मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों को रोजाना काम में ली जाने वाली वस्तुओं, थैले, स्टेशनरी, उपहार सामग्री और खाद्य उत्पादों की खरीद में स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजीविका उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाए। और अब मौसम। राज्य के अधिकतर स्थानों पर मॉनसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने कल बांसवाड़ा, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ सहित 12 जिलों में बरसात का ऑरेंज अलर्ट बताया है। वहीं अजमेर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू और जोधपुर सहित 27 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। अगले 2-3 दिन मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। आज कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। इस बीच आज सलुम्बर जिले के कई इलाकों में रुक रुक कर रिमझिम बारिश हुई। बारा में सुबह से ही हल्की बारिश का सिलसिला बना रहा। दोपहर बाद करीब 1.25 घंटे जोरदार बरसात हुई। जल संसाधन विभाग के अनुसार 1 जून से अब तक प्रदेश में हुई बारिश सामान्य से लगभग 10 से 12% कम है। 8 जिलों में अत्यधिक, 14 में सामान्य और 19 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। प्रदेश के छोटे बड़े 693 बांधों में से 454 बांध आंशिक रूप से भरे हैं, 223 खाली हैं और सिर्फ 16 बांध ही लबालब हैं। झालावाड़ में कालीसिंध नदी उफान पर है, इससे नौनेरा बांध में तेजी से पानी की आवक बढ़ रही है। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आमजन से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। सावन के पवित्र महीने का आज दूसरा सोमवार है। महादेव की आराधना के लिए शिवालयों में सुबह

0: ही भक्तों की कतारें लगी हुई है। साथ ही जल, दूध, बिल्व पत्र से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। शिव मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम बोले की गूंज है। पाली के सोजत में महिलाओं ने आज कावड़ यात्रा निकाली। सवाई माधोपुर के शिवाड़ में सहस्त्र घट और रुद्राभिषेक आयोजित किया गया, साथ ही भजन संध्या भी रखी गई है। घुश्मेश्वर महादेव, अर्णेश्वर, अम्बरेश्वर और सोलेश्वर सहित छोटे बड़े शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर के जगतपुरा स्थित गुप्त वृंदावन धाम में पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह मंदिर भक्ति और आध्यात्मिक चेतना तथा संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन का केंद्र बनकर उभरेगा। आज विश्व शेर दिवस है। शेरों की घटती आबादी और उनके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शेर संरक्षण की दिशा में मिली सफलता की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश में साल 2015 में शेरों की संख्या 523 थी, जो बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। इस मौके पर उन्होंने वन्य जीवों और जैव विविधता की सुरक्षा का सरकार का संकल्प दोहराया। श्री यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो साझा किया। श्री मोदी ने शेरों के प्राकृतिक आवास को बचाने और शिकार तथा इंसानी दखल से उनकी रक्षा की प्रतिबद्धता दर्शाई है।
1: लायन है, हम हैं, हम हैं तो लायन है कि भावना को निरंतर मजबूत किया। हम सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में सीमित नहीं रह सकते, हमें इसके लिए स्थानीय लोगों और एनिमल के बीच एक रिश्ता बनाना होगा। ये रिश्ता इमोशन का भी होना चाहिए और इकोनॉमी का भी होना चाहिए।
0: हर घर तिरंगा अभियान से समूचे प्रदेश में देशभक्ति के रंग नजर आ रहे हैं। देशभक्ति के नारों और लहलहाते तिरंगों से वातावरण राष्ट्र प्रेम से सराबोर है। अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर लोग हाथों में तिरंगा लिए राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ ही एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत कर रहे हैं। 12 में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं ने उत्साह के साथ तिरंगा रैली में भाग लिया। उधर चित्तौड़गढ़ में निकाली गई तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट्स और शहरवासी शामिल हुए। सलूम्बर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, पाली, करौली, बांसवाड़ा सहित अन्य स्थानों पर प्रभात फेरी और तिरंगा वाहन रैली का आयोजन रखा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में जारी गतिरोध पर चिंता जताई, कहा सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा आवश्यक। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा सरकार का पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का कोई विचार नहीं। प्रदेश में अब तक 87 लाख से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी बनाई गई। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता बरकरार, हालांकि 19 जिलों में अब तक सामान्य से कम पानी बरसा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जितेंद्र शर्मा। श्रीगंगानगर जिले में स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, स्वच्छता और महिला सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के काम जारी है। पदमपुर में आयुष चिकित्सालय का पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धतियों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इस चिकित्सालय से पदमपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को आयुष चिकित्सा सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी। जिला चिकित्सालय में कैथ लैब को मंजूरी मिल गई है। इसके शुरू होने से हृदय रोगियों को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी और दूसरे शहरों में रेफर करने की जरूरत कम होगी। इससे मरीजों और उनके परिजनों का समय और अतिरिक्त खर्च बचेगा। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 66,46,00,000 रुपए की लागत से 102 सड़कें बनाई जाएंगी। इनकी कुल लंबाई 211 किलोमीटर से अधिक है। अनूपगढ़, रायसिंह नगर, सादुलशहर, श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर और सूरतगढ़ क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों में मिसिंग

0: सिंक और नॉन पेचेबल सड़कें शामिल है। इनके बनने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन बेहतर होने के साथ ही कृषि और व्यापार गतिविधियां भी आसान हो जाएंगी। श्रीगंगानगर शहर में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के पांचवे चरण में करीब 40 करोड़ 20 लाख रुपए के काम प्रस्तावित है। जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि इनमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन और जल निकासी, विरासत संरक्षण और पर्यटन तथा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े काम शामिल है। अधिकारियों को शहर की जरूरतों के अनुसार कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर रिजर्व पुलिस लाइन में जनसंवाद और जागरूकता रैली हुई। महिलाओं और बालिकाओं को राजकॉप सिटीजन ऐप, इसके SOS फीचर और साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा संकल्प पोस्टर का विमोचन और पौधरोपण भी किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बेहतर प्रदर्शन के लिए श्रीगंगानगर जिले को स्वच्छ भारत मिशन समग्र प्रगति पुरस्कार 2025-2026 मिला है। जयपुर में हुए राज्यस्तरीय समारोह में ये सम्मान मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरधर बेनीवाल ने ग्रहण किया। जिले को कचरा संग्रहण, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और व्यक्तिगत शौचालयों से जुड़े उल्लेखनीय कार्यों के लिए ये उपलब्धि मिली है। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने पिछले दिनों नई धान मंडी में किसानों के साथ संवाद किया। किसानों ने सिंचाई जल, फसल बीमा, डिग्गी, तारबंदी, उर्वरक और कृषि ऋण से जुड़े मुद्दे रखे। गंग नहर में सिंचाई पानी बढ़ाने और डिग्गी तथा फार्म पॉन्ड के अनुदान में वृद्धि की मांग भी रखी गई। श्री चौधरी ने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। सप्त शक्ति कमांड की जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने श्रीगंगानगर, लालगढ़ जाटान और सूरतगढ़ सैन्य स्टेशनों का दौरा किया। उन्होंने नग्गी वॉर मेमोरियल पर 1971 के युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान सैन्य तैयारियों और प्रशिक्षण की समीक्षा की गई। जिले की गंग नहर की प्रमुख नहरों के आधुनिकीकरण और इनकी मजबूती पर 137 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करीब 154 किलोमीटर लंबी नहरों की रीलाइनिंग की जाएगी। इससे पानी की बर्बादी कम करने और नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने में मदद मिलने की संभावना है। कर्णिजी नहर की रीलाइनिंग के लिए कार्यादेश जारी हो चुके हैं। और अब बात जिले की खेल उपलब्धि की। अनूपगढ़ के गांव 12 AB के बसंत कुमार मेघवाल ने अमेरिका के ओरेगॉन में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों की हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.21 मीटर की ऊंचाई पार की। वे इस प्रतियोगिता की हाई जंप स्पर्धा में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं। इसके साथ ही श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद रा कामकाज माय अड़चन माथा चिंता जताई, कहो सदन माय जनता रा मुद्दा माथा चर्चा जरूरी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी कहो सरकार रो पेट्रोल माय इथेनॉल री मात्रा 20% बत्ती बधावन रो कोई विचार नहीं है। प्रदेश माय हाल ताई 87 लाखों बत्ता किसाना री फार्मर आईडी बनाई ची। और राज्य रा घनखर हल्का माय चौमासा री बिरखा, हालांकि 19 जिला माय हाल ताई सामान्य कम पानी बरसियो। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सगली सियासी पार्टियां रा नेताओं सदन री कार्रवाई ठीक ढंग चलावण माय मदद करण रियरज कीनी है। श्री बिरला सदन माय विपक्ष कानून करया जा रहा हंगामा माथे आज संसद भवन माय भी कार्य मंत्रणा समिति री मीटिंग माय चिंता जताई। वह कहो कि जनताओं जुड़िया मुद्दा माथा चर्चा जरूरी है, इन सारू सगला री मदद री जरूरत है। तो जिकानी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो कि सरकार विद्यार्थियों विरोध प्रदर्शन और इणु जुड़िया मुद्दा बारा माए संसद माए विगतवार चर्चा सारू तैयार है। वह गृहमंत्री अमित शाह कानियों हर मुद्दा रो जवाब देवन रो भरोसो दिरायो। रिजिजू कहो कि जनता ने तथ्यारी जानकारी रो हक है। वह विपक्ष हूँ सदन माए अनुशासन बनाए।

0: ਰੱਖਣ ਸਾਗੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਏ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਨੀ। ਕਾਰਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਛੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਰਿਸਰ ਮਾਏ ਖਬਰਨਵੀ ਸਾਂ ਸਾਗੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤਾ ਥਕਾਂ ਰਿਜੀਜੂ ਵਿਪਖੂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਚਾਲਤੀ ਰਹਿਵਣ ਮਾਏ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੀਚੀਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: इणु पहली राज्यसभा में विपखरा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे विद्यार्थियों के खिलाफ लाड़ला दिना करी जी कार्रवाई माथे संसद में गृहमंत्री रा बयान री मांग कीनी।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी कहो है कि सरकार पेट्रोल में इथेनॉल री तादाद 20% उम्बत्तीकरण रो कोई फैसलो नहीं लिनो है। राज्यसभा में एक सवाल रा लिखित जवाब में श्री गोपी बतायो कि इंबारा में आवता भगत में कोई फैसलो वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन पाछे और मोटर गाड़ियां बनावन वाला और तेल बेचण वाली कंपनियां सागे बातचीत पाछे ही करो जावेला। राज्य री 16वीं विधानसभा रा 20 अगस्त नु शुरू होवण वाला छठा सत्र री तैयारियां रो जायजो लेवण शुरू विधानसभा रा प्रमुख सचिव आज अहलकारां सागे मीटिंग कीनी। इन दौरान विधानसभा भवन परिसर में आवण वाला रे दाखिल वेवण री व्यवस्था हिफाजती जांच और गाड़ियां उभी करण री ठौड़ समेत न्यारी न्यारी व्यवस्थावां रे बारा में चर्चा करी छी। राज्य रा निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह कहो है कि एक राज्य एक चुनाव री सोचू माली बचत सागे साधना ने बेहतर तरीका काम लिया जा सकेला। वे प्रदेश में आवता दिना फेवन वाला नगर निकाय और पंचायती राज संस्थावां रा चुनाव री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू अहलकारां सागे राखी जी मीटिंग में बोल रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त कहो कि टेम सर चुनाव करावण सारू सगली जरूरी तैयारियां करी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग रा सचिव राजेश वर्मा बतायो कि 39 जिला माए नगर निकाय चुनाव दो दौर माए जदके फलौदी और सलूम्बर माए एक दौर माए कराया जावेला। वे बतायो कि पंचायती राज संस्थावां रा चुनाव 36 जिला माए चार दौर माए, चार जिला माए दो दौर माए और जैसलमेर जिला माए एक दिन माए कराया जावेला। राज्य निर्वाचन आयोग रा सचिव बतायो कि पंचायत समिति जिला परिषद और नगर निकाय रा सदस्यों रो चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रे जरिए जदके पंच और सरपंच रो चुनाव कागज माथा छप्योड़ा मतपत्रा रे जरिए करायो जावेला। न्यारा न्यारा देशां रा डिजिटल कंटेंट बनावन वाला और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आजकल उदयपुर में है। 16 अगस्त ताई प्रदेश माए न्यारी न्यारी ठोड़ा रो दौरो कर वठेरी सांस्कृतिक विरासत ने सोशल मीडिया रे जरिए बतावेला। पेश है एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय रा खास कार्यक्रम रा तहत 18 देशा रा 32 क्रिएटर काल राजस्थान पधारिया। सबू पहली आ झीला री नगरी उदयपुर री न्यारी नरी ठोड़ा रीला ब्लॉग और वीडियो बना रहा है। ये पारंपरिक कला और हाथरी कारीगरी ने करीबू समझेला। इस आगे ही वे वठेरा कारीगरा सागे ही बातचीत करेला। वारो चित्तौड़गढ़ और गुलाबी शहर जयपुर माए सैर सपाटा रोई कार्यक्रम है। ओदल जयपुर माए वेवण वाला स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम माए भी शिरकत करेला। ई कोशिश हूँ राजस्थान री संस्कृति ने न्यारा न्यारा प्लेटफॉर्म रे जरिए आखी दुनिया माए नूवी ओलखाण मिलेला। समाचार कक्ष हूँ सालेहा गाजी।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य में हाल ताएं 87 लाखों बत्ता काश्तकारा रा किसान पहचान पत्र फार्मर आईडी बना दिया गया है। आ तादाद तय करीजी तादाद रो करीब 97% है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में राखी जी एग्री स्टेक स्टीयरिंग कमेटी री मीटिंग में आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि एग्री स्टेक उन जुड़िया काम पूरा करण पर राज्य ने हाल ताई 737 करोड़ रुपया री प्रोत्साहन राशि मंजूर करी जी है। मीटिंग में कृषि विभाग री प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल बतायो कि राजसमंद अरसिरोही जिला में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल लागू करियो जा चुको है। वे बतायो कि खाद री खरीदी में आसानी और साफ कोई बधावण सारू इनने बेगोई आखा राज्य में लागू करियो जावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो है कि सरकारी महकमा री खरीदी रकम में राजीविकारी सदस्य का नियम बनाई ज्या सामान ने बधावो दियो जावणो चाहिए। वह आ सामान रे बिक्री बधावण सारू मार्केट रिसर्च गुणवत्ता लॉजिस्टिक्स और तकनीकी मदद माथे जोर दीनो। आज जयपुर में राखी जी एक मीटिंग में मुख्य सचिव न्यारा न्यारा महकमा में थैला स्टेशनरी उपहार सामग्री और खान पीन री चीजा सरीखा रोजीना काम आवन वाला सामान स्वयं सहायता समूह का न्यू लेवण माथे जोर दीनो। अरे मौसम प्रदेश में घनखर ठोणा चौमासारी बिरखा वह रही है। मौसम विभाग काल बांसवाड़ा बारां भीलवाड़ा बूंदी और चित्तौड़गढ़ समेत 12 जिला में बरसात रो ऑरेंज अलर्ट बतायो है। अजमेर अलवर जयपुर झुंझुनू और जोधपुर समेत 27 जिला सारू येलो अलर्ट जारी करी चियो है। आवता 2-3 दिन मझलाऊं तेज दर्जारी बिरखा रा आसार है। आज कोटा उदयपुर और अजमेर संभाग में कठे कठे भारियों घनी भारी बारिश री संभावना है। ये बीच आज सलूम्बर जिला रा कई हलका में रुक रुक कर बरसात रो सिलसिलो चालियो। बारा माय सवारे हल्की बारिश शुरू हुई। दोपहर पाछे करीब 1.25 घंटा ताई झमाझम में बरसियो। झालावाड़ में काली सिंध नदी उफण रही है जिणु नौनेरा बंधा में तेज यूं पानी आ रियो है। प्रशासन एहतियात राखता थका जनताओं सुरक्षित छोड़ा जावण री अपील कीनी है। ये बीच जल संसाधन महकमा रे मुजब 1 जून नु हाल ताई राज्य में हुई बिरखा सामान्य करीब 10-12% कम है। 8 जिला में घनी जोरदार 14 में सामान्य और 19 जिला में सामान्य कम बिरखा हुई। राज्य रा छोटा मोटा 693 बंधा मायू 454 थोड़ा घना भर गया है। 223 रीता है जबकि केवल 16 बंधा पूरा भरिया है। सावन रो आज दूजो सोमवार है। ई मौके महादेव री भक्ति सारू शिव मिंद्रा माय संवार हुई मोटी तादाद माय जात रूप उगण लाग्या। मिंद्रा माय जल दूध और बील रा पत्ताऊ भोलेनाथ रो अभिषेक करियो चार्यो है। पाली जिला रा सोजत माए आज महिलावां कावड़ यात्रा निकाली। सवाई माधोपुर जिला रा शिवाड़ माए सहस्त्र घट और रुद्राभिषेक रा कार्यक्रम राखी जिया और भजन संध्या राखी जा रही है। घुष्मेश्वर महादेव अरणेश्वर अमरेश्वर और सोलेश्वर समेत न्यारा न्यारा मिंद्रा माए जात्रुआ रो तांतो लाग्योड़ो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर रा जगतपुरा माय गुप्त वृंदावन धाम माय पूजन कीनो। ई मौके वे कहो कि ओ मिंदर भक्ति आध्यात्मिक चेतना और संस्कृति ने बचावण और बधावो देवण रो केंद्र बनेला। आज विश्व शेर दिवस है। शेरानी घटती आबादी ने ध्यान राखता थका वन बचावण सारू जाग जगावण बाबत ओ दिन मनायो जावे है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव देश माय शेरा ने बचावण रा काम माय मिली कामयाबी री सराहना कीनी है। वह कहो कि देश माय साल 2015 माय शेरा री तादाद 523 ही जो 2025 माय 891 वेगी। श्री यादव सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो वीडियो साझा कीनो जिन माय श्री मोदी शेरा रा कुदरती रहवास ने बचावण और शिकार और इंसानी दखल वारी हिफाजत रो संकल्प रो दर्शाव कीनो।
4: लायन है हम हैं, हम हैं तो लायन है कि भावना को निरंतर मजबूत किया। हम सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में सीमित नहीं रह सकते, हमें इसके लिए स्थानीय लोगों और एनिमल के बीच एक रिश्ता बनाना होगा। ये रिश्ता इमोशन का भी होना चाहिए और इकोनॉमी का भी होना चाहिए।
0: आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद रा कामकाज माय अड़चन माथा चिंता जताई कहो सदन माय जनता रा मुद्दा माथा चर्चा जरूरी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी कहो सरकार रो पेट्रोल माय इथेनॉल री मात्रा 20% उम्बत्ती बधावन रो कोई विचार नहीं है। प्रदेश माय हाल ताए 87 लाख उम्बत्ता किसान री फार्मर आईडी बनाई जी और राज्य रा घनखर हल्का माय चौमासा री बिरखा हालांकि 19 जिला माय हाल ताए सामान्य कम पानी बरसियो। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
5: पापा लाइए 3000।
6: क्यों भाई?
5: मेरी पॉकेट मनी।
6: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
5: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
6: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
5: अपना मोबाइल लाओ।
6: ले ले।
7: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
8: हर लेन देन अब है आसान।
9: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
10: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
9: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
12: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अब किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम भारती।

0: राम भारती कार्यक्रम सुनभवाला सगला श्रोताओं ने आपकी बेंट तमारा हाड़ा को घणो घणो राम राम और नरपत भाई आपने भी राम राम
1: सारा ग्रामवासियों ने नरपत सिंह रो राम राम और साथ ही तंवर बहन आपने भी राम राम।
0: तो नरपत भाई रामा श्यामा तो होगी पर आपसे कहीं पूछ पूछाऊ मु पूछू हाँ सर पूछ रही हूँ कि आप देखो आया हो भाग्या भाग्या आ रहा हो और गीला लत्ता हो रहा है आपका जूता भी गारा में बन रहा है तो कहाँ से आप आए थोड़ी बताओ सा।
1: बिल्कुल कि क्योंकि आज देखो बरसात को मौसम सो तो भीजता भीजता तो आया थे लेकिन बाहर आपने जो आप बरसात को मौसम चाल रहे थे इम अपना किसान भाइयों में ये कहबो चाहूँ कि जो बार अगस्त को महीनों चाल रहे थे तो इम भी पखवाड़ा में जो अपना कृषि कार्य है ना बापर भी अपन ध्यान देना चाहिए।
0: बिल्कुल देखो आप जो बता रहे हो नहीं इसे आपने पता चल रहे हो कि आप खेती बाड़ी को काम करके ही पता रहे हो और देखो जो बरसात को टाइम है ये टाइम पे आपने घनी बातों को ध्यान रखना पड़े क्योंकि आपने जो करसान रहा
1: बिल्कुल क्योंकि बार आप अपना खेत में ध्यान रख ला तो अपना किसान भाई जो खेत में जाकर अपना जो बरसात का मौसम में अपना पौधा की वृद्धि देखे पौधा की संख्या देखे वाको पत्ती क्या को रंग चेंज होगो मिट्टी की नमी खरपतवार की स्थिति देखा और कीटा को प्रकोप भी बढ़ जाओ चे बीका बारा में और बीका लक्षणा ने भी देखना चाहिए क्योंकि कोड़े कोड़े जंडे जंडे ज़्यादा बरसात होगी बंडे अपना खेत में पानी जमा होगो पानी जमा हो बाग कारण से कहा जो अपना पौधा की जड़ा में पर्याप्त वायु कुन मिले जिस कारण बा में सड़बा की समस्या भी उत्पन्न हो जाओ इसलिए अपना खेता में जंड भराव भोगो पानी भरगो बा किसान भाइया ने मेड़ बनार या नाली के द्वारा भी जल ने बाहर निकालनो चाहिए।
0: बिल्कुल सा आप सही बताया और देखो अपन ने टेम टेम पे खेती जो बाड़ी है अपनी निगरानी अपन ने टेम टेम पे जा करके देखना है कि कहाँ पानी भरा रही है और कहीं कीट तो नहीं लाग गयो है अगर उनमें कोई कीट लाग गयो है तो उनको टेम पे इलाज भी डॉक्टर के अनुसार लेवा दवाई छटका उनको ताकि वह रुक सके उन बीमारी ने और अच्छी फसल आप ले सकें
1: और जंडे बरसात कोनी मान लियो या कम हो रही चे बंडे मिट्टी में जो उपलब्ध नमी को निरीक्षण भी करना चाहिए क्योंकि कड़कड़े आप फसल बादिया बंडे आपने सिंचाई की भी जरूरत पड़ गई है क्योंकि बरसात नहीं हुई तो बंडे आवश्यकता अनुसार आपने सिंचाई भी करनी चाहिए और जो अनावश्यक जो खरपतवार होगो बिन्हें भी आपने निकालना चाहिए।
0: तो यो टेम बहुत ही बढ़िया है कि आपने अपनी खेती बाड़ी ने देखनी है जहाँ पानी भरा रही हो है उनको निकास करना है कहीं अगर आपकी जो मेड़ बंदी है वह टूट गई है नालियाँ टूट रही है तो उन्हें आप ठीक कर ले ताकि पानी बेकार न जावे और आपने जो आबार आप बताया कि खरपतवार छे तो उन्हें भी आबार आप निकाल देवा और जो निंदाई गुदाई को काम छे वो

0: ये बातों को अपना जो करसान बहन भाई है वे भी ध्यान रखना और आपने भी कोई बात को ध्यान रखना है। तो अब आप समझ ही गया होगा कि लोकगीत आड़ी चालनो है और एक अपना जो श्रोता सुन रहा है माने लोकगीत सुनानो है।
1: बिल्कुल सुनाओ चौकसो एक लोकगीत।
0: हाँ लोसा सुनो।

0: ਸਾਉਣ ਆਇਓ ਰਹੇ, ਸਾਉਣ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਦਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਤੰਵਰ ਬਹਿਨ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅਬੇ ਆਪਣੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਅੱਧਵਾਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗੇ ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਲਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੋ ਦੇ ਰਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹ, ਚਾਲਾਂ ਸੁਣਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ।
2: किसान भाइयों, आज अपने सागे डॉक्टर बनवारीलाल यादव जी, जनसंपर्क अधिकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार जयपुर सु पधारिया। डॉक्टर साहब थाको स्टूडियो में घणो घणो स्वागत है सर।
3: धन्यवाद विशाल जी। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को नमस्कार कहना चाहूँगा और आज की हम बात आगे बढ़ाएं उसके पहले हम बताना चाहेंगे कि किसान भाइयों के लिए सरकार काफ़ी सारी योजनाएं चलाती है ताकि ज़मीनी स्तर पर किसानों तक योजनाएं पहुँचे। उसके लिए आपके माध्यम से इन योजनाओं का प्रचार प्रसार या इनके लिए जागरूकता फैलाई जाती है जो किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती है।
2: जी, तो डॉक्टर साहब अबार जी यहाँ प्रधानमंत्री कुसुम योजना भी चल रही है, एक बार हम थे माने बताओ।
3: देखिए विशाल जी, ये योजना मार्च 2019 में केंद्र सरकार ने शुरू करी थी और इस योजना का मुख्य जो उद्देश्य है, मकसद है, वो किसानों को सौर ऊर्जा पंपों के लिए वित्तीय सहायता देना है ताकि जो बिजली बिलों का जो भार आता है किसानों पे वो कम किया जा सके और साथ ही सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना भी सरकार का एक मकसद रहा है। और इसके लिए सभी किसान या जो भी पात्र संस्थाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर सब्सिडी देते हैं, ये सब्सिडी 60% तक भी है कई जगह। और इस योजना में मुख्य तौर पे जो घटक है वो 14 लाख का एक स्टैंड अलोन और सौर कृषि पंपों की स्थापना के लिए है और घटक गय में 35 लाख ग्रिड कलेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण फीड स्तर पर किया जाता है। तो इससे आमतौर पर किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती और विश्वसनीय बिजली मिलती है, साथ ही बिजली की समस्या से छुटकारा मिलता है। जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि गाँव में कभी दिन में बिजली आती है, कभी रात को आती है, या शिफ्ट में आमतौर पर सभी देश के कई हिस्सों में ऐसा होता है। तो किसानों को इस समस्या से निजात मिल जाती है कि वो सौर ऊर्जा से चूंकि ऊर्जा मिल जाती है तो उससे वो अपने हिसाब से कभी भी पंप को चालू करके आराम से अपनी फसल को पानी दे सकता है, सिंचाई कर सकता है।
2: जी सर, तो डॉक्टर साहब थे कुसुम योजना के बारे में आपने किसान बयान बताया, तो एक सवाल मारो वो है पीएम कुसुम योजना राजस्थान की प्रगति की है।
3: देखिए विशाल जी, जैसा हम बात कर रहे थे, जो कुसुम योजना है इसका मुख्य मकसद किसानों की आय में वृद्धि करना भी है। और जहाँ तक बात राजस्थान की है तो इस योजना में राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर पर है, जो अपने लिए गर्व की बात है।
2: जी,
3: राजस्थान में 1305 मेगावाट क्षमता के 684 विकेंद्रित और सौर ऊर्जा स्थापित हो चुके हैं। पिछले एक साल की बात करें तो 1190 मेगावाट के 592 प्लांट लगे हैं। कुसुम योजना में प्रदेश में जयपुर डिस्कॉम में 169 से अधिक मेगावाट, जोधपुर डिस्कॉम में करीब 1000 मेगावाट और अजमेर डिस्कॉम में 137 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगे हैं।
2: जी,
3: मुख्यमंत्री श्री शर्मा की पहल के बाद राजस्थान पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में अग्रणी तो कंपोनेंट सी में तीसरे स्थान पे है। इसी तरीके से कंपोनेंट ए में 457 मेगावाट के प्लांट अकेले राजस्थान में है, वहीं कंपोनेंट सी में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान तीसरे नंबर पे है। तो ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि इस योजना में राजस्थान पूरे देश में सबसे आगे है और इसका सीधा फायदा हमारे किसान भाइयों को मिलता है, उन्हें सस्ती बिजली और वो अपने समय के हिसाब से जब भी सौर ऊर्जा से अपना सिंचाई आराम से कर सकते हैं। तो राजस्थान इस योजना के लागू होने के बाद से इसमें अग्रणी रहा है।
2: तो डॉक्टर साहब, पीएम कुसुम योजना का मायने बिजली कितनी सस्ती मिल रही है माका किसान बहन, आप भी चीज थे जानकारी दो।
3: देखिए बिल्कुल, ये किसानों के फायदे के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो राजस्थान के अलग अलग जिलों में लगे प्लांटों से अगर हम बात करें कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर अलग अलग डिस्कॉम्स है, यहाँ पे 2.09 रुपए से लेकर 3 रुपए प्रति यूनिट तक की दर से भी सस्ती बिजली इनको मिल रही है। और दूसरी ओर इसके दूसरे फायदे जो है वो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि शून्य कार्बन उत्सर्जन आधारित बिजली पर ये पूरा फॉर्मेट है।
2: जी,
3: तो न केवल सस्ती बिजली मिलती है बल्कि इससे जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसमें भी कमी आई है। सौर ऊर्जा के साथ साथ विकेंद्रित सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रदेश देश का प्रमुख हब बनकर उभर रहा है। पीएम कुसुम के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन की बदौलत राज्य में कुल 1305 मेगावाट क्षमता के 684 विकेंद्रित और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं।

0: योजना के कंपोनेंट ए में अधिकतम 2 मेगावाट और कंपोनेंट सी में अधिकतम 5 मेगावाट क्षमता तक के ग्रिड कनेक्टेड प्लांट लगाए जाने का भी प्रावधान है। तो इस तरीके से किसानों को सिर्फ जहां सस्ती बिजली मिल रही है, दूसरी ओर उनकी सुविधा के हिसाब से वो यूज भी कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब थे तीचो की जानकारी माके किसान भाइयों दे रहे हो, तो एक साथ साथ एक चीज और बताओ कि ई योजना को फायदो माका किसान भाई क्या उठा सके।
0: देखिए जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इस योजना के तहत जो भी पात्र किसान है या जो अन्य संस्थाएं हैं वो अप्लाई कर सकती है, और इस योजना के तहत राजस्थान में किसानों को सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये योजना किसानों को बिजली की समस्या से निजात दिलाकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देती है, और इस योजना में जो अनुदान दिया है उसके बारे में बताया जा चुका है। चूंकि ये इस योजना के तहत स्टैंड अलोन और कृषि पंप और फीडर की सौर ऊर्जा से जोड़ना जैसे कई घटक है, तो इसके लिए सीधे तौर पे जो डिस्कॉम्स है उनके थ्रू उनको अप्लाई करना होता है, और उसके बाद में उनको ये सोलर की सुविधा मिल जाती है।
1: जी तो डॉक्टर साहब थे अतिचो की जानकारी मां किसान बयान दी। तो अबार थे जी यहाँ तीन घटका के बारे में बताया, तो अन्य थोड़ा सा विस्तार बताओ मां के किसान बयान जिसू मां का किसान भाई ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके।
0: देखिए विशाल जी, ये पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत जो तीन घटक है ये तीनों को मैं जरा विस्तार से बता देता हूँ, चूंकि ये इन घटकों के अपनी एक अहमियत है। घटक ए जो है उसमें किसान अपनी जमीन पर 2 मेगावाट की क्षमता तक के विकेंद्रीकृत ग्राउंड स्लिट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर या अन्य नवीनीकरण ऊर्जा आधारित पावर प्लांट लगा सकते हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा पावर प्लांट जिसे REPP कहते हैं, इससे किसान अपनी जमीन पर सीधे खुद या किसानों के समूह यानी जो ग्रुप बना के या सहकारी समितियों के थ्रू या जो किसान उत्पादक संगठन होते हैं, जल उपयोगकर्ता संघ होते हैं, इनके साथ मतलब ग्रुप में साझेदारी या डेवलपर के माध्यम से लगा सकते हैं। इन पावर प्लांट से उत्पन्न नवीनीकरणीय बिजली को डिस्कॉम द्वारा पहले से तय स्वीकृत टैरिफ पर खरीदा जाता है। यदि किसान डेवलपर को अपनी जमीन पट्टे पर देते हैं तो वे लीज रेट के लिए भी पात्र है। साथ ही बताना चाहूंगा कि इसमें डिस्कॉम जो होते हैं वो डिस्कॉम वाणिज्यिक संचालन तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए खरीदी गई यूनिट प्रति यूनिट 0.40 रुपए या स्थापित क्षमता की प्रति मेगावाट 6.6 लाख रुपए जो भी कम हो की दर पर प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र है। डिस्कॉम यदि चाहे तो इस घटक के तहत केंद्र सरकार द्वारा उन्हें दिए गए PBI को REPP मालिक को दे सकते हैं ताकि RE बिजली को अधिक प्रतिस्पर्धी टैरिफ प्राप्त किया जा सके। ये तो हो गई घटक ए की बात, अब हम आपको बताएंगे घटक बी के बारे में। इस घटक के अंतर्गत किसान सिंचाई के लिए स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप लगा सकते हैं। सरकार स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप के लिए 30% या जो अपने नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है पहाड़ी क्षेत्र है इनके लिए 50% तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
1: जी
0: अब हम बात करेंगे घटक सी के बारे में। यह घटक अपने व्यक्तिगत पंप सोलराइजेशन मोड के तहत ग्रिड से जुड़े हुए हैं। जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन और कृषि भार के फीडर लेवल सोलराइजेशन को भी सक्षम बनाता है। सरकार घटक सी के तहत IPS और FLSS दोनों के लिए 30% या जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र है उनके लिए 50% की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह किसानों को दिन के समय सुनिश्चित सौर ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। हम आपको बता दें कि सरकार ने मार्च 2019 में PM कुसुम योजना शुरू की थी जिसे जनवरी 2024 में बढ़ाया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करना, उनकी आय बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करना और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना है।
1: जी सर,
0: PM कुसुम योजना की घटक बी और घटक सी के तहत भारत सरकार स्टैंड अलोन कृषि पंपों की स्थापना और ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए 30% या पूर्वोत्तर क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र द्वीपों के लिए 50% की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
1: डॉक्टर साहब थे का बारे में बताया, अब डॉक्टर साहब मगे किसान बयान अब बताओ कि PM कुसुम योजना के तहत जो की तरह आ योजना चलती रहे इसके लिए सरकार के द्वारा काई काई आवश्यक कदम उठाया जा रहा है।
0: देखिए जैसे अपनी पहले भी बात हुई थी 2019 में ये योजना शुरू की गई
1: जी,
0: 2024 में इसको फिर से बढ़ाया गया 2026 तक के लिए, क्योंकि ये योजना सीधे तौर पे किसानों के लिए इतनी लाभकारी है और दूसरी ओर पर्यावरण के लिए भी इतनी लाभकारी है कि ये इस योजना को बार बार एक्सटेंड किया गया है। और साथ ही सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि इसका प्रॉपर तरीके से क्रियान्वयन हो ताकि किसानों को इसका भरपूर फायदा मिले। तो इसी के तहत और साथ ही उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और द्वीप संघ राज्य क्षेत्र में व्यक्तिगत किसान और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च जल स्तर वाले क्षेत्र में क्लस्टर सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं में प्रत्येक किसान के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता जो 15 HP था उसको उसकी पंप क्षमता के साथ उपलब्ध है। इस योजना के तहत किसानों को कम लागत पर वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों वित्तीय संस्थानों के साथ बैठकों का आयोजन करना शामिल है। साथ ही स्वचालित और पंपों की खरीद के लिए राज्य स्तरीय निविदा की अनुमति दी गई है। कार्यान्वयन के लिए समय सीमा प्रारंभिक मंजूरी के दिन बढ़ा के 24 महीने तक कर दिया गया है। घटक ए और घटक सी यानी फीडर स्तर सौरीकरण के अंतर्गत निष्पादन बैंक गारंटी की आवश्यकता में छूट प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने में तेजी लाने के लिए इंस्टॉलर आधार को बढ़ाने के लिए निविदा शर्तों में संशोधन किया गया है। किसानों को सब्सिडी वाला ऋण प्रदान करने के लिए कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत शामिल योजना के घटक बी और सी के अंतर्गत पंपों का सौरीकरण किया गया है। यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशा निर्देशों के अंतर्गत शामिल की गई जिससे वित्त प्राप्त करना आसान हो सके। साथ ही प्रतिष्ठापनों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए सौर पंपों की विशिष्टताओं और परीक्षण प्रक्रिया को समय समय पर संशोधित किया जाता है। इस योजना की निगरानी करने के लिए केंद्र और राज्य स्तरों के बीच वेब पोर्टल विकसित किए गए हैं। CPSU सहित प्रचार और जागरूकता उत्पन्न की जाती है। योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना सुविधाजनक बनाने के लिए टोल फ्री नंबर प्रदान किया गया है। प्रगति की नियमित निगरानी करने और क्रियान्वयन के दौरान प्राप्त सबकों के आधार पर योजना की दिशा निर्देश में स्पष्टीकरण और संशोधन जारी किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को प्रगति और प्राप्त लक्ष्यों के आधार पर विस्तार दिया गया है। घटक सी में भूमि संग्रह प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए योजना के दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। मंत्रालय ने 2023 के दौरान घटक बी के अंतर्गत बेंचमार्क लागत भी जारी की है। इस योजना के तहत अनिवार्य राज्य अंश प्रावधान को हटाने के लिए भी इस योजना में संशोधन किया गया था। इस तरीके से इस योजना की क्रियान्वयन के लिए समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे।
1: तो किसान भैया आज डॉक्टर साहब आपा नतीजों की जानकारी दी। किसान ने सौर ऊर्जा पंप के लिए वित्तीय सहायता देनु और सौर ऊर्जा बढ़ावा देनु इके लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना जिकी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है इके लिए अतीचों की जानकारी ली। डॉक्टर साहब को घने मानसु धन्यवाद।
2: विशाल भाई आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद जो डॉक्टर साहब से अति चोखी जानकारी दिलाया थे प्रधानमंत्री कुसुम योजना से। तो तंवर बहन आपा कोरो कोरो धन्यवाद कुंदिया।
3: बिल्कुल सा अब आपा चला लोगी थाड़ी और आपने जो डॉक्टर साहब है यानी राजू विशाल भाई है यानी भी धन्यवाद सारो सुना था। एक लोक गीत
2: सुनाओ सा।

0: हरपत भाई, यो लोकगीत सुनियो जो अशोक लाग्यो आपने,
1: बहुत ही जोरदार हो।
0: बहुत ही अच्छो लोकगीत हो। और अब देखो नरपत भाई, घड़ी भी आपने इशारो कर रही है कि आज का ग्राम भारती कार्यक्रम ने यही विराम ना, तो आपकी बहन तमर हाड़ा और
1: नरपत सिंह ने
0: दो आज्ञा
1: और करा
0: चालार कना
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: सा।
0: सा।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम भारती। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। किसान भाइयों के लिए ही अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।
1: खेती बाड़ी।

0: खेतीबाड़ी सुन बाला सारा श्रोता ने किसान भाई ने नरपत सिंह रो राम राम और साथ ही तंवर बहन आपने भी राम राम
1: राम राम सा नरपत भाई आपने भी राम राम और जो अपना खेत कल्याण में बैठिया है जो खेता में काम कर रहा है किसान बहन भाई वहाँ ने भी राम राम।
0: देखो बरसात को मौसम चल रही हो तो आपा तो बरसात को ध्यान रख ले चल लेकिन कुछ अपना पशु चे जो वे बोले को ना तो बाकी भी बरसात का मौसम अपन ध्यान रखना चे।
1: बिल्कुल सही बोले आप कि आपा खेती बाड़ी को काम करा हाँ और पशु अपन रखा हाँ दूध अपना ने छाए जी सही तो यहाँ की देखभाल भी अपन जिम्मेदारी बने कि यहाँ की देखभाल भी अपन बराबर बराबर टेम पे करा। और जब बात है बारिश की तो बारिश का टेम पे आपने घनी बातों को ध्यान रखना है यानी क्योंकि बारिश का दना में यानी देखो खान पान भी सही मिलना जरूरी है तो सूखो चारो यानी देवा और सूखी ठाम पे यानी बिठावा।
0: बिल्कुल क्योंकि बरसात का मौसम में अपना पशु जो छे वही चारा के साथ साथ में भी बहुत सारी समस्या भी आ जाए छे कि इस मौसम में अधिक नमी भी रहे छे गंदगी रहे छे कीचड़ मच्छर माखी भी रहे छे दूषित पानी के कारण अपना पशु बीमारी भी फैल जाओ छे। तो बरसात का मौसम में अपना पशु आने बहुत ज़्यादा विशेष देखभाल की आवश्यकता है। पशुआ की अपन देखभाल के लिए अपन कहेंगे जिसको दूध जो भी कार्य आप क्षमता बढ़ावा था दूध तो बी के लिए अपना पशुओं ने भी देखना चाहिए कि सबसे पहले अपन पशुओं को रेबा को स्थान चाहिए बहुत बढ़िया होना चाहिए।
1: बिल्कुल सा ये देखना अपन के कहीं जहाँ आप बांध रहे हो जानवर ने वहाँ पानी तो न टपक रही हो ई बात को ध्यान रखा पानी इकट्ठो न उबा देवा और वहाँ के वहाँ गीलो भी ज़्यादा न रखा वहाँ मिट्टी डाल देवा ताकि वहाँ के सूखो बने रहे। और चारा को विशेष आपने ध्यान रखना है कि कहीं असली फपूंद वालों चारों तो आप नहीं दे रहे हैं हाँ या गंदो संदो या बस बेकार चारों तो नहीं दे रहे जिसमें अपना जानवर बीमार हो जाए ये बात को भी आपने ध्यान रखना है। और कीड़ा मकोड़ा को तो आपने ध्यान रखना ही है क्योंकि देखो बारिश को टाइम है तो माखियाँ मच्छर तो हो ही रहा है तो वहाँ के लिए ये बात को भी ध्यान रखें कि ज़्यादा माखी मच्छर वहाँ के आस पास न हो ताकि वह बीमार न हो। और यह भी देख लें वहाँ कि भाई कहीं ऐसा कोई खड्डा वड्डा न पड़ रहा हो कोई दराड़ा न पड़ रहा हो जहाँ अपना न सांप बिच्छू का बैठ जावे तो इन बात को भी आपने ध्यान रखो यानी केवा को मतलब ये हो कि जहाँ भी आप अपना जानवर बांधा वहाँ ठाम बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल चौकी बात बताया कि थे के वो चाहो चो कि आपने जो पशुओं को जो बाड़ो जो ने वो साफ सुथरा रहना चाहिए क्योंकि गंदगी में ज़्यादा मच्छर माखी तो हो ही साथ ही का गोबर या फर्श पर जो मूत्र है बी के कारण गंदगी कारण संक्रमण फैल जाए तो बाका जो पैर जो भी में कीचड़ में रेला तो वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ बाकी पनप जाए जी कारण अपना पशुओं ने ज़्यादा ज़्यादा ध्यान रखना क्योंकि अपन दूध उत्पादन लेना जो अपना पशुओं को देखना क्योंकि अपना पशु बीमार नहीं हुए नहीं बीमार हो जाओ तो अपन अपन दवाई दारू दवाने पड़ ली तो अपने आमदनी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ लो। इस कारण से जो अपने बरसात का मौसम में चाहे जो पशुओं ने देखे कि जो अपने पशु बारिश में भीज नगो चाहे सूखा पर हम ऐसा बंद है और मान ले तो वो भीज भी गो तो बिना सूखी बोरी से पूंछ देवे या छोटा जो विशेष रूप से बछड़ा चाहे या कमजोर पशु चे या गर्भवती पशु चे बाको अधिक ध्यान रखना चाहिए क्योंकि लंबा समय तो गीला रेबा से वहाँ में सर्दी जुकाम या त्वचा संबंधी रोग भी हो जाएगी।
1: बिल्कुल सा और यह बातों को आपने ध्यान रखना है या भी देख ले वहाँ अपन कि कहीं अपने पशु जानवर बीमार तो न होगी कहीं उन्हें बुखार तो नहीं आ रही हो मुँह पका खुर पका जैसी बीमारी तो न होगी वो चारों पानी टाइम से खा रहे न खा रहे पानी पी रहे न पी रहे नहीं पी रहे तो उनके तई देखा और डॉक्टर के तुरंत दिखावा ताकि अपने जो जानवर है वे अधिक बीमारों पास बच जावे। और नरपत भाई
0: हाँ सर
1: अब मैं देख रही हूँ कि देखो अपना जो श्रोता है वे अपने लोकगीत को इंतजार कर रहे होला।
0: बिल्कुल सुनो चौकसो लोकगीत
1: लोसा सुनो यो लोकगीत।

0: नरपत भाई, सावन को महीनो चाल रो छे। और सावन का महीना में मोर भी बोले छे, पानी भी पड़े छे, झूला भी बन रिया छे। बड़ो आनंद को टाइम चाल रो छे। और देखो ई के साथ ही अब अपनी जो अभिलाषा बहन छे वह भी आ चुकी छे कुछ जानकारी लेकर के। तो यहाँ से जानना कुछ जो ये जानकारी दे रही छे तो यहाँ की बात भी सुन ला।
1: बिल्कुल दिलाओ जानकारी।
0: लो सा सुनो।
2: किसान साथियों, कार्यक्रम में जानकारी देवा खातिर अपने साथ है डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, उप निदेशक उद्यान उद्यान आयुक्तालय जयपुर से। और यहाँ से अपनी बातचीत को विषय रेवेलो वर्षा ऋतु में सब्जी उत्पादन। तो लक्ष्मण सिंह जी, आपको कार्यक्रम में गणो गणो स्वागत। राम राम सर।
3: राम राम सर। राम राम किसान भाइयों।
2: तो सर जी, यहाँ की आप बात कर रहे हैं कि वर्षा ऋतु में सब्जी उत्पादन विषय में आते हैं, तो जो कार्यक्रम सुन रहे हैं किसान साथी, माने यो ही बताओ, यदि खेत की तैयारी की बात करा तो वो अपना किसान साथी की कर करे।
3: खेत की तैयारी के लिए मैं बताऊं कि जो इस बार अभी जो खरीफ के अंदर जो भी फसल लगनी है उसके अंदर हम सबसे पहले जो तैयारी करते हैं वो करते हैं नर्सरी की, यानी जो मेरी हमारी जो पौधशाला है। किसान भाई उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर लें कि हम किस प्रकार से पौधशाला को तैयार करते हैं। यदि किसान भाइयों मैं बात करूं कि यदि हमारे को 1 हेक्टेयर खेत की पौध तैयार करनी है तो इसके लिए 200 से 250 वर्ग मीटर पौधशाला की आवश्यकता रहती है। और इसमें जो हम मिट्टी लेंगे वो अच्छी तरह से उसको भुरभुरी कर लें, उसके बाद में उसमें सड़ी गली गोबर की खाद जो कि 40 से 50 किलोग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से मिला के हम उसकी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। तैयार करने के लिए सबसे पहले हम समतल जो हमारी भूमि है उसकी बजाय, चूंकि बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है और आगे भी बरसात ही रहेगी, इसलिए हम समतल की बजाय जो क्यारियां हैं उनको उठी हुई क्यारियां के अंदर हम पौधशाला तैयार करेंगे। ये 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई में उठी हुई रहती है और जिनकी चौड़ाई लगभग 1 मीटर के आसपास रहेगी,
2: जी
3: ताकि सिंचाई के समय हमारे हमें दिक्कत नहीं हो, उसके अंदर हम आराम से सिंचाई कर सकें, खरपतवार का नियंत्रण कर सकें तथा पौध संरक्षण के जो कार्य है वो सुविधाजनक रूप से उसमें संपन्न कर सकें। साथ ही किसान भाइयों हमें ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक दो कार्यों के मध्य 1.5 से लेकर 2 फीट जगह हमारे को छोड़नी चाहिए ताकि हम उसके अंदर कृषण कार्य आराम से कर सकें, जल निकास आसानी से किया जा सके, जल भराव की जो स्थिति वो नहीं बने और हमारी जो क्यारियां हैं या जो हमारी जो उगने वाली बीज हैं वो सुरक्षित रूप से अंकुरण उनका हो सके। साधारणतः क्यारियां 10 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी व आधा फीट ऊंची बनाते हैं। क्यारियों के अंदर हम सबसे पहले जो मिट्टी है उसको उसका एक उपचार करते हैं ताकि उसके अंदर पहले से यदि कोई जीवाणु या कीटाणु है तो वो खत्म हो जाए। इस हेतु बीजों की बुआई से पूर्व 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान 3 ग्राम 3 जी प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिलाकर भूमि को उपचारित करेंगे तथा 2 ग्राम कैप्टॉन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम बीजों की को भी उपचारित करके और उसके अंदर हमें हम बुआई करते हैं, जिससे हमारे बीज उपचारित रहेंगे तथा रोग और जीवाणुओं से मुक्त रहेंगे।
2: जी सर।
3: साथ यदि जब ये जब आपकी नर्सरी किसान भाइयों तैयार हो जाती है तो रोपाई के लिए भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से एक जो शिशु पौधा होता है उसकी हम रोपाई खेत के अंदर कर सके। जब पौधा 4 से 5 सप्ताह अर्थात ये 10 से और 15 सेंटीमीटर का हो जाए तो हमें इस पौधे को भी उपचारित करना चाहिए, जिस तरह से

0: हम एक टीका लगाते हैं बीज के, उसी तरह से पौधे को भी पूर्व में उपचारित करना जरूरी है, जिससे कि उसके अंदर मिट्टी जनित या किसी भी प्रकार के रोग न लगें। इसके लिए जो छोटा पौधा है 4 से 5 सप्ताह का, उसकी जड़ों को कार्बेंडिजम या ट्राइकोडर्मा के घोल में 20 से 25 मिनट तक रख के और उपचारित करेंगे, और उपचारित करने के पश्चात उसकी बुआई करेंगे। साथ में मेड़ों के चारों तरफ यदि हम गेंदे की रुपाई कर देवें, और गेंदे की रुपाई इसलिए ज़रूरी होती है कि फूल खिलने के की जो अवस्था होती है गेंदे की, तो जो भी फल छेदक या दूसरी प्रकार के कीट है वो हमारे सब्जियों को नुकसान न करके और जो गेंदे की फलियां हैं या फूल है उनके ऊपर अंडे देंगे, और हमारी जो मुख्य फसल है वो इन कीटों से बच सकती है। इस प्रकार की हम छोटी छोटी जानकारियां या छोटा छोटा ध्यान रख के हमारी नर्सरी को इस वर्षा ऋतु के अंदर तैयार कर सकते हैं, तथा उस तैयार की हुई नर्सरी के पौधे हम हमारे जो खेत है उसमें लगा सकते हैं, तथा अधिक से अधिक उत्पादन और जिसको कहते हैं कि क्वालिटी वाला जो उत्पादन है वो किसान भाई इस वर्षा ऋतु के अंदर ले सकते हैं।
1: जी साहब, तो सर जी यहाँ की आप बात कर रहे हैं अपना सब्जियाँ की, तो सब्जियाँ तो देखो अपना किसान भाई उगा भी देवला और पूरी मेहनत से वाने सींचेला भी बड़ो भी करेला अपनी फसल
0: जी
1: ने, पर कई बार बहुत ज़्यादा ध्यान राखबा से सावधानी राखबा के पाछे भी कई कीट और व्याधियाँ अपनी सब्जियाँ में लाग जाओ छे, जो अपना किसानों ने काफ़ी नुकसान पुगावे। तो यहाँ का
0: जी
1: नियंत्रण के तानी अपना किसान साथी का उपाय करे?
0: किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जितनी जो भी फसल है उसको सबसे ज़्यादा यदि कोई नुकसान पहुंचाता है तो हमारे कीड़े और जो उसके अंदर लगने वाली बीमारियां हैं वो पहुंचाती है। आप लोग, हम जब भी नर्सरी तैयार करते हैं उस समय भी हम हमारे बीजों को उपचारित करते हैं, इसके पश्चात में हम हमारी मिट्टी को भी उपचारित करते हैं। इन के बावजूद भी कई कीट और रोग हमारी फसलों को नुकसान कर सकते हैं। और अभी जो इस ऋतु की यदि हम बात करें तो ये जो मौसम है उसके अंदर नमी बहुत ज़्यादा रहती है, तो जो पौधों की बढ़वार के लिए मौसम यदि अनुकूल है तो उसी प्रकार से जो हमारे कीट और बीमारियां हैं उनके प्रसारण के लिए भी ये मौसम अत्यधिक अनुकूल रहता है। तो इस मौसम के अंदर कीट और व्याधियां ज़्यादा उत्पन्न होती है, तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो कीट पतंगे या व्याधियां हैं उनके जो भी अंडाणु या जीवाणु है वो सुषुप्त अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात होती है और पानी गिरता है तो ये सक्रिय अवस्था के अंदर आ जाते हैं, और उसी समय जो हमारे पौधे या तो वो बीज जमीन के अंदर है या फिर जमीन से उग गया है और पौधे बाहर है तो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अभी यदि हम किसान भाइयों बात करें तो हमारे खेतों के अंदर कुष्मांड कुल की सब्जियां हैं, साथ में ही कुछ और सब्जियां भी हमारे खेतों के अंदर है, तो हम ये चाहेंगे कि कृषक भाई इन सब्जियों का विशेष ख्याल रखें। और यदि मैं कुष्मांड कुल की या जो अपने कुकुरबिटेसी जो सब्जियां हैं इनके बारे में बात करूं तो जैसे जिस प्रकार में जो इन सब्जियों के अंदर कद्दू बीटल एवं हाडा बीटल की रोकथाम के लिए ये कीट बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसकी रोकथाम के लिए हमारे को डाई मिथाइल 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई इसके में छिड़काव करें, इस जो ये जो कद्दू बीटल है इससे हम निजात पा सकते हैं।
1: जी साहब,
0: इसके अलावा यदि हम दूसरी फसलों की बात करें तो कुकुरबिटेसी के साथ साथ में बैंगन है, टमाटर है, इसके अंदर इस मौसम के अंदर माइट की भी काफ़ी संभावना रहती है, ये माइट्स भी हमारी फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है, तो इसके रोकथाम के लिए जो दवा हम प्रयोग में करेंगे वो है मिथाइल डेमाटोन। ये मिथाइल डेमाटोन 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, या जो दूसरी दवा है वो है डाइकोफॉल 18.5 EC दवा 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से यदि हम छिड़काव करें तो इन माइट्स की समस्या से निजात कृषक भाई पा सकते हैं और हमारी फसलों को इस माइट से बचा सकते हैं। साथ में ही मैं कुष्मांड कुल की सब्जियों में जो कीट आता है वो है फल मक्खी। फल मक्खी भी बहुत एक हानिकारक कीट है जो कि हमारी जो कुष्मांड कुल की सब्जियां हैं उसके अंदर छेद कर देती है और उसकी जो क्वालिटी है उसको खराब कर देती है। तो फल मक्खी की रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर का प्रति लीटर के पानी के हिसाब से यदि हम छिड़काव करें और उस छिड़काव को आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के बाद में दोहराएं तो हम इस फल मक्खी से निजात पा सकते हैं। और साथ में ही जो दूसरा है जैसे हरा तेला है, मोइला है, उससे भी हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। कुछ और सब्जियों की यदि मैं बात करूं तो करेला है, तुरई है, टिंडा है, ककड़ी, बैंगन, टमाटर आदि के अंदर भी फल छेदक कीट बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनको

0: नियंत्रण करने के लिए जो यदि हम फलों को यदि हम उपचारित करना चाहते हैं तो जो काणे फल हैं या जिनमें ज़्यादा प्रभाव हो गया है तो उनको तो हमें तोड़ के और गाड़ के नष्ट कर देना चाहिए, भूमि में गाड़ देना चाहिए। जहाँ पर प्रारंभिक रूप से इनका प्रभाव हुआ है वहाँ पर हम मेलाथियन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल में यदि हम छिड़काव करें हम इस फल छेदक कीट से निजात पा सकते हैं।
1: जी साहब, और
0: जी
1: मानसून का मौसम के समय आपने जो सब्जियां चाहे वहां कौन कौन सा प्रमुख कृषि कार्य कर अपना किसान साथी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके।
0: जी अभी मानसून के समय जो प्रमुख कृषि कार्य हैं वो है कि हमारे जो फसलें अभी खेतों के अंदर हैं उनके अंदर हम पर्याप्त मात्रा के अंदर खाद, गोबर की खाद है चाहे वो रासायनिक खाद है, उसको देवें जिससे कि हमारी पौधों की बढ़वार बहुत अच्छी हो और हमें उपयुक्त मात्रा के अंदर हम उसका उत्पादन ले सकें। साथ में हमें कुछ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी वर्षा ऋतु की है, वर्षा की जो संभावना है उसके मद्देनज़र सब्जियों में सिंचाई नहीं देवें, सिंचाई को भी हम स्थगित करें तथा रसायनों का छिड़काव भी तब करें जब मौसम पूरे की पूरी तरह से खुल चुका हो, यानी साफ मौसम के अंदर ही हम रसायनों का छिड़काव करें। साथ ही यदि मैं टमाटर फसल की बात करूं तो टमाटर की वर्षाकालीन फसल की तैयारी के समय खेत में 75 बाई 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें पौध का रोपण करना चाहिए और यदि संकर किस्में हैं तो उसमें गोबर की खाद 300 से 350 क्विंटल, नत्रजन 90 किलोग्राम, फास्फोरस 120 किलोग्राम और पोटास 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें फसल के अंदर देना चाहिए। यदि दूसरी जो महत्वपूर्ण फसल है वो बैंगन, बैंगन में पौध रोपण के 20 दिन बाद में 20 किलोग्राम नत्रजन को खड़ी फसल में देकर सिंचाई करनी चाहिए। बैंगन की संकर किस्म है तो उसमें हम ये जो मात्रा है नत्रजन की वो 30 किलोग्राम रखेंगे। भिंडी कि यदि हम किसान भाइयों बात करें तो भिंडी की खड़ी फसल में बुआई के 30 दिन बाद नत्रजन 30 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हम देवें जिससे कि भिंडी की फसल में भी बढ़वार होगी और उसमें जो फल हैं वो भी अच्छे क्वालिटी के प्राप्त होंगे। यदि हम कुष्मांड कुल की सब्जियों की बात करें तो जैसे लौकी है, तुरई है, टिंडा, खीरा, फसलों में बुआई के 25 से 30 दिन के बाद में नत्रजन 30 किलोग्राम, साथ ही फूल आने के समय 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में भी नत्रजन देके और यदि हम सिंचाई करते हैं तो हम अच्छी मात्रा के अंदर सब्जियों से उत्पादन ले सकते हैं।
1: जी साहब, तो किसान साथियों अपने साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, उप निदेशक उद्यान उद्यान आयुक्तालय जयपुर से, और यहाँ से अपनी बातचीत को विषय रहे हो वर्षा ऋतु में सब्जी उत्पादन। तो डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम में पधारिया, इतनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी मक्का किसान साथियों से साझा की के तानी आपको घनो घनो धन्यवाद सर।
2: साथ ही अभिलाषा बहन आपने घनो घनो धन्यवाद जो थे बताया कि वर्षा ऋतु में सब्जी उत्पादन से चौकी जानकारी द्वारा लक्ष्मण जी से, तो तंवर बहन आने कोरो कोरो धन्यवाद कोने देवा आपा।
3: तो बिल्कुल सही बोले आपके, यानी कोरो कोरो धन्यवाद कौन देवा। और अब सुन ला मौसम के अनुरूप आपा भी यो लोकगीत
2: सुनाओ सा।
3: लो सा सुनो।

0: आई आयो तीज त्यौहार बार सावण के महीना में बहुत ही चोको गीत सुने आपा और किसान भाई ने भी सुनाया।
1: बिल्कुल सा। और अब देखो घड़ी को इशारो भी हो चुके हो कि खेती बाड़ी को जो कार्यक्रम है अट्ठाई पूरा हो तो जा रही है। तो आपकी बेंड तंवर हाड़ा और
0: नरपत सिंह ने
1: दिलाओ आज्ञा चालाओ और करा
0: राम राम
1: राम
0: सा।
1: सा।

अभी किसान भाई सुन रहे थे खेतीबाड़ी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स, साथ ही दूरदर्शन की डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉक्टर एम थम्बीदुरई और डॉक्टर एम धनपाल, रंकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेदेपा के भाष्यम रामकृष्ण, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, द्रमुक सदस्य एल के सुधीश और शिवसेना की डॉक्टर ज्योति नागराज वाघमारे ने हिस्सा लिया। प्रस्तावित कानून में बैंकर्स बुक्स या बैंक कार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उसके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण या स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, विक्रमजीत सिंह साहनी, डॉक्टर कल्पना सैनी, रेखा शर्मा, धनंजय भीमराव महादिक, बाबूराम निषाद, द्रमुक सदस्य पी विल्सन, बीजत के सुभाषीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू और तेदेपा के विजय चिंता कायला ने हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। उन्होंने कहा कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कलपुर्जे ऐसे हैं जिनका भारत में निर्माण नहीं होता, लेकिन देश में उनकी जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुबंध पर विनिर्माण करने वाली कंपनियों से जुड़ी विदेशी कंपनियों को कर छूट देने का प्रस्ताव है। यह छूट वर्तमान में 5 साल के लिए उपलब्ध है, जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2040-41 तक करने का प्रस्ताव है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पूर्व में भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की बहुस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। विधेयक में डेटा सेंटर के लिए अधिक स्पष्ट और सरल नियमों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में UPI लेन देन करने वाले पर

2020 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के अमरपाल मौर्य, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे, डॉ मेधा विश्राम कुलकर्णी, सुजीत कुमार, बाबू भाई जयसंग भाई देसाई, दर्शना सिंह, डॉ धर्मशीला गुप्ता, डॉ दिनेश शर्मा, अधिकारी मायूम शारदा देवी, केसरी देव सिंह झाला, डॉ कल्पना सैनी और रेखा शर्मा ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। बाद में उच्च सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की बैठक राजधानी दिल्ली में पिछले महीने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 3 बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की सदन में उपस्थिति और जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारेबाजी की। सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध विषयों को उठाने की अपील की। हंगामे के बीच ही भाजपा के राहुल सिन्हा, तरुण चुग, डॉ के लक्ष्मण और बाबू भाई जयसंग भाई देसाई ने आसन की अनुमति से सदन में लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्षी सांसद आगे की पंक्ति के पास एकत्र हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिए जाने की मांग करने लगे। राधाकृष्णन ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने को कहा ताकि उनकी मांग पर विचार किया जा सके। अपनी बात का असर होता न देख सभापति ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसन की अनुमति से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। कुछ सदस्य तो अपने स्थान से उठकर आगे आ गए। सदन में व्यवस्था न बनते देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक के फिर से शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। शोर शराबे के बीच ही सदन में 3 अन्य विधेयक खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार विद्यार्थियों के मामले को लेकर चर्चा और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृह मंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह बात कही गई है कि सरकार विस्तार से चर्चा और जवाब देने को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन

नारेबाजी करते रहे। इस बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। श्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उनका कहना था कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने आसन के समीप आकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और अब जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देने को तैयार है तो सदन की कार्यवाही चलने देनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आसन पर उस समय आरएसपी नेता एन के प्रेमचंद्रन थे, जिन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। वैसे सामान्य तौर पर लोकसभा में प्रश्नकाल के समय आसन पर अध्यक्ष ओम बिरला होते हैं। हंगामा जारी रहने पर भी श्री प्रेमचंद्रन ने बैठक शुरू होने पर भी 2 मिनट अंदर ही दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। हालांकि ये दोनों विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध थे। हंगामा नहीं थमने पर भी पीठासीन सभापति संध्या राय ने दोपहर 12:14 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार 16वें दिन आज भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन में आज पेश किए गए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। विधेयक के तहत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। एनसीडीसी के प्रमुख कार्यों में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और आयात निर्यात से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। इस नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वितरण के अनुसार जून 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और केंद्र सरकार द्वारा सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद सहकारी क्षेत्र के विकास में एनसीडीसी की भूमिका काफी बढ़ गई है। केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 भी सदन में पेश किया गया, जिसमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह था। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

पतंग संग उड़ गया बचपन, छनक छनक मन टगर सुहानी रे, लड़कपन आया अब तो कसक मसक के क्या मस्तानी रे, अरे क्या हाय जवानी की हो

0: रखे पेड़े, रेवड़ी में रखवाली चाट तरीबा की लाएगा। अरे मैं हुक्म करूँ तो दूर अरब से पूरा बाग खजूर लाद के आंगन में भरपूर तू मेरे लगवाएगा।
1: अरे लगवाऊंगा।

आजा नचले, आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। समूसर में ये गीत था, मुख्य आवाज़ें थी सुखविंदर सिंह, सुनिधि चौहान, माधुरी दीक्षित और साथियों की। प्रोग्राम का अगला गीत सुनिए के और हेमा सरदेसाई की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आबरा का डाबरा।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे आबरा का डाबरा फिल्म का ये गीत के और हेमा सरदेसाई का गाया हुआ। प्रोग्राम का आखिरी गीत

श्रोताओं, के मोहन और यशिता शर्मा के गाए हुए टू स्टेट्स फिल्म के संगीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद यानी 8:30 से आप हमारा प्रसारण दिल्ली केंद्र से सुनेंगे, जिसमें पहले स्पोर्ट्स स्कैन, उसके बाद समाचार संध्या, फिर न्यूज़ 8:00, उसके बाद उर्दू में समाचार और पब्लिक स्पीक प्रोग्राम 9:30 पर दिल्ली केंद्र से होगा। साथ ही रात 10:00 संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश सुनिएगा दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम।

0: का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा किए। भारत ने 3 पदकों के साथ किया वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप का समापन। मोहन बागान सीआईएसएफ को हराकर डूरंड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। बोधना शिवानंदन और श्रेयस रॉयल ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। और एफआईएसयू विश्वविद्यालय स्क्वॉश चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेल विजेताओं से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से भारत के खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। Always cheer for Bharat. Bharat Mata Ki. Jai. Bharat Mata Ki. Jai. Bharat Mata Ki. Jai.
0: मोदी ने कहा कि सम्मान केवल रिबन काटने से नहीं मिलता, बल्कि एक महत्वाकांक्षी खिलाड़ी के मन में जोश भरने से मिलता है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेलो इंडिया के प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी जीत आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
2: इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा।
3: मैं बहुत ज्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरे 21 में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजुरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो
2: बहुत बहुत बढ़िया। आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने लवलीना बोरगोहेन की एकाग्रता की भी सराहना की।
2: क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?
4: सर उस दिन हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था, सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, तो उन्होंने बोला कि हम चेंज भी करेंगे, अभी चेंज भी हो गया सर।
2: नहीं लेकिन ये इस विजय की परिस्थिति, एक खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है, लंबे समय तक लोगों को याद रहे।
0: जादूमणि सिंह ने करगिल दिवस से जुड़े अपने अनुभव प्रधानमंत्री से साझा किए।
2: करगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी?
5: उस दिन करगिल डे था, वैसे जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, वो उस दिन का था। इंडियन आर्मी से हूँ तो मैंने उस दिन पहले से बहुत वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है। मैंने वो पाकिस्तान को एक तरफा मैंने 5-0 से हराया, हमारा इंडियन आर्मी का करगिल हीरोज को मैंने डेडिकेट किया था सर।
2: आपको ये याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं तो मैं जरूर मानता हूँ कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना कि मैं करगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित कर, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए, जिसको पराजित करना था उसी को किया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए लगातार जीत हासिल करने में भारतीय खिलाड़ियों के समर्पित प्रयास और निरंतर सफलताएं विद्यार्थियों को प्रेरित करती हैं।
2: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में, अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है।

0: प्रधानमंत्री ने देश को गौरवान्वित करने के लिए पदक विजेताओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। और अब बात एथलेटिक्स पर। अमेरिका के यूजीन में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत का अभियान 3 पदक के साथ समाप्त हुआ। नेशनल सीनियर रिकॉर्ड होल्डर पूजा सिंह महिलाओं की हाई जंप फाइनल में 7वें स्थान पर रही। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: वर्षीय पूजा इस साल की शुरुआत में 1.93 मीटर का नेशनल सीनियर रिकॉर्ड बनाने के बाद इस प्रतियोगिता में एक मजबूत दावेदार के तौर पर उतरी थी। हालांकि फाइनल में वो केवल 1.84 मीटर ही पार कर सकी। इसके बाद वो 1.87 मीटर की ऊंचाई पार करने की तीनों कोशिशों में नाकाम रही और प्रतियोगिता से बाहर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की इजोबेल लुइसन रो ने 1.92 मीटर की ऊंचाई पार करके स्वर्ण पदक जीता। हंगरी की लिलियाना बाटोरे ने रजत और स्पेन की इताना अलोंसो ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इस वर्ष पूजा ने मई में एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1.93 मीटर का रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता था। वो सीनियर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मौजूदा चैंपियन भी हैं। भारत की महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वो फाइनल में आखिरी स्थान पर रही। भारतीय टीम में भूमिका नेहते, तहुरा खातून, तनु चौधरी और थिया अरुमुगम शामिल थी। अमेरिका ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण, ऑस्ट्रेलिया ने रजत और ग्रेट ब्रिटेन ने कांस्य पदक जीता। भारत ने चैंपियनशिप का समापन 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ किया, जो वर्ष 2021 और 2022 के संस्करणों में जीते गए कुल पदकों की संख्या के बराबर है। आशीष यादव ने पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर भारत को टूर्नामेंट का पहला पदक दिलाया था। वहीं बसंत कुमार मेघवाल ने पुरुषों की हाई जंप में 1 और सिल्वर मेडल जोड़ा, जबकि शहनवाज खान ने पुरुषों की लॉन्ग जंप में कांस्य पदक हासिल किया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित की जाएगी। विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: हॉकी विश्व कप के पारंपरिक क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। दोनों क्रॉसओवर पूलों से शीर्ष दो टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। नए प्रारूप के कारण टीमों के पास शुरुआत से ही गलतियों की गुंजाइश कम होगी, क्योंकि पहले पूल चरण के परिणाम अगले चरण में भी लागू हो सकते हैं। भारत की पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। टूर्नामेंट की शुरुआत में प्रत्येक प्रतियोगिता की 16 टीमों को 4-4 टीमों के 4 पूलों में बांटा जाएगा। 15 से 20 अगस्त तक प्रत्येक टीम अपने पूल की अन्य टीमों के खिलाफ 3 मैच खेलेंगी और अंतिम रैंकिंग के आधार पर अगले चरण की टीमों का निर्धारण होगा। पूल ए और डी की शीर्ष दो टीमें पूल ई में प्रवेश करेंगी, जबकि पूल बी और सी की शीर्ष दो टीमें पूल एफ में खेलेंगी। पूल ई और पूल एफ से शीर्ष दो टीम सीधे अंतिम 4 में पहुंचेंगी। प्रतियोगिता के महिला वर्ग का समापन 29 अगस्त को, वहीं पुरुष वर्ग का अंतिम मुकाबला 30 अगस्त को खेला जाएगा। अर्जुन शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात स्क्वॉश पर। मुंबई में खेले गए FISU विश्वविद्यालय स्क्वॉश चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते। व्यक्तिगत पुरुष वर्ग में पहली बार भारत ने स्वर्ण, मिक्स टीम चैंपियनशिप में रजत और व्यक्तिगत पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीते। सुनते हैं मुंबई से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: India secured 3 medals at the 2026 FISU World University Championship squash, with Surat Kumar Chand winning the men's singles gold, India earning silver in the mixed team event, and Om Samwal sharing the men's singles bronze. India's Suraj Kumar Chand, the student of Somaiya Vidyavihar University, won the men's singles gold medal after defeating Hungary's Benedek in a thrilling 5-game final. Suraj thus became the first Indian ever to win the men's singles title at the FISU World University Championship. Championship squash in 16 years. Suraj is also part of the Indian squash squad for the upcoming Asian Games. India's Om Samwal and Francis Joshua shared the men's singles bronze medals after reaching the semi-finals, adding another podium finish to the men's singles event. India followed its strong showing in the singles events with a place in the team event final.

0: after overcoming Spain 3-1 in the semi-final. The final against Hong Kong China was closely contested, with both teams winning two rounds each. With the score tied at 2-2, the team event title was decided by game difference. Hong Kong China finished with 8 games won to India's 6, securing the gold medal while pipping India to the silver medal position. For SportsCan, this is S. Kishore from Mumbai.
1: स्वर्ण पदक विजेता सूरज कुमार चांद ने जीत के बाद अपने अनुभव साझा किए।
2: रियली हैप्पी आफ्टर विनिंग दिस टूर्नामेंट एंड बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये टूर्नामेंट खेल के। लास्ट टाइम हमें ब्रॉन्ज मिला था टीम इवेंट में और मुझे पर्सनली ब्रॉन्ज मिला था इंडिविजुअल्स में, तो इस बार गोल्ड जीत के और सिल्वर जीत के काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड मैं काफ़ी हैप्पी हूँ अपने रिजल्ट से।
1: चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। डूरंड कप फुटबॉल में मोहन बागान सुपर जॉइंट ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आज सीआईएसएफ प्रोटेक्टर्स को 6-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। सुनते हैं नेहा की ये रिपोर्ट।
3: ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के नायक साहल अब्दुल समद रहे, जिन्होंने पहले हाफ में ही हैट्रिक जमाई। उन्होंने 17वें, 19वें और 37वें मिनट में गोल किए। उनके अलावा मनवीर सिंह ने 24वें, जेमी मैकलारेन ने 68वें और टेकचाम अभिषेक सिंह ने 73वें मिनट में गोल दागे। इससे पहले कल हुए ग्रुप डी के अपने आखिरी मैच में TRAUFC ने इंडियन नेवी को 2-1 से हराया। इस मैच में अफरीदी बुयामायूम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल किए। बुयामायूम ने 16वें मिनट में एक शानदार कर्लिंग शॉट के साथ खाता खोला, लेकिन खेल फिर से शुरू होने के ठीक 16 सेकंड बाद खुल्ला कपम जहीर खान ने गोल कर मुकाबले को बराबर कर दिया। इसके बाद बुयामायूम ने 60वें मिनट में TRAU को फिर से बढ़त दिलाई और अपनी बढ़त बनाए रखी। इंडियन नेवी ने गेंद पर ज्यादा कब्जा रखा और 26 बार गोल करने की कोशिश की, जिसमें से 15 शॉट टारगेट पर थे, लेकिन TRAU के डिफेंस और गोलकीपर ताजुद्दीन ने उन्हें बार बार रोका। वहीं TRAU ने सिर्फ 8 शॉट लिए और 2 गोल भी दागे। इस नतीजे के साथ TRAU 3 मुकाबले में 4 अंकों के साथ ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर रही, जबकि इंडियन नेवी ने 3 अंकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। कोई भी टीम क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच सकी। पहली बार खेल रही FC रेंगदाई ग्रुप में शीर्ष पर रही और अंतिम 8 में जगह बनाई। इंडियन नेवी के लगातार अटैक के बावजूद वे बराबरी का दूसरा गोल नहीं कर सके और TRAU ने कड़े मुकाबले के बाद जीत हासिल की। इस जीत के साथ TRAU का डूरंड कप अभियान समाप्त हुआ। लंबे समय तक सेलर्स के दबदबे वाले इस मैच में बुयामायूम की फिनिशिंग और ताजुद्दीन की गोलकीपिंग ने आखिरकार निर्णायक भूमिका निभाई। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्सकैन।
1: बात शतरंज पर। भारतीय मूल के 2 खिलाड़ियों ने ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2026 में इतिहास रच दिया है। 11 वर्षीय बोधना शिवानंदन और 17 वर्षीय श्रेयस रॉयल ने कल ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। बोधना ब्रिटेन की अब तक की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज चैंपियनशिप ने का खिताब जीतकर महिला सिंगल्स में उन्होंने जगह बनाई थी। उन्हें उधर फाइनल में उन्होंने आयरलैंड की 14 वर्षीय त्रिशा कनेमाराला को रोमांचक रैपिड प्लेऑफ में हराया। वहीं दक्षिण पूर्व लंदन के श्रेयस रॉयल ने 9 दौर के बाद सबसे ज्यादा अंक हासिल कर ओपन ब्रिटिश खिताब अपने नाम किया। उन्होंने इंग्लैंड के अनुभवी ग्रैंड मास्टर्स को आधे अंक से पीछे छोड़ा। ये उनका पहला ब्रिटिश खिताब भी है। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल जगत की हर खबर के साथ आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर

0: सुरक्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे, पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do.
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: Permits authentication through manual, digital and electronic signatures.
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू

0: ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
1: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
3: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खिंगांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
4: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजी परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
5: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और harghartiranga.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना

0: किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ. अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ. राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नृत्य निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes taxation bill to strengthen country's manufacturing ecosystem, attract investment and create jobs. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures UPI transactions to remain free. Legislation granting legal recognition to digital banking records as evidence also gets nod from Parliament.

0: बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और FIH हॉकी आलमी कप 2026 नए फॉर्मेट के साथ इस हफ्ते बाद में शुरू होगा, जिसमें क्वार्टर फाइनल मुकाबले खत्म कर दिए गए हैं। अब खबरें तफसील से। टैक्सेशन और दीगर कवानीन तरमीमी बिल 2026 राज्यसभा में गौर खोज के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है, इस तरह इस बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी मिल चुकी है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ऐवान बाला में ये बिल पेश किया। बहस का जवाब देते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि टैक्सेशन और दीगर कवानीन तरमीमी बिल 2026 का मकसद भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मुस्तहकम करना, मजीद सरमायाकारी को रागिब करना, रोजगार पैदा करना और मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों को फरोग देना है। उन्होंने वाजे किया कि ये बिल UPI सारिफिन पर किसी तरह का टैक्स या लेन देन के चार्जेस आयद नहीं करता। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि छोटे कारोबारियों और ग्राहकों को UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस अदा नहीं करने होंगे। पार्लियामेंट की जानिब से बैंकरों के बही खाता शवाहिद बिल 2026 को भी मंजूरी मिल गई है, क्योंकि राज्यसभा ने भी इसे आज मंजूर कर लिया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बिल पेश किया, जिसका मकसद मौजूदा बैंकिंग निजाम की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को हम आहंग करना है। ये बिल बैंकरों के बही खाते और इसे हम असर डिजिटल बैंकिंग तरीकाकार से मुताबिकत पैदा करने के लिए शवाहिद से मुतालिक कानून फराहम करता है। बैंकरों के बही खाता शवाहिद बिल 2026 में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि बैंकरों के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को शवाहिद के तौर पर काबिल कबूल और मजाज माना जाएगा और वो कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। इस बिल पर बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि ये बिल इसलाह पर मबनी कदम है जो मुल्क की तेज रफ्तार पेश कदमी में मदद करेगा। उन्होंने वाजे किया कि बैंकरों के बही खाता शवाहिद कानून को 1891 में तरतीब दिया गया था, जब बैंकिंग निजाम पूरी तरह से कागज से चलता था। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि आज भारत ने अपनी मईशत को डिजिटल शक्ल देने में काबिल जिक्र तरक्की का मुजाहरा किया है। मोहतरमा सीतारमन ने मजीद कहा कि बैंकिंग और इक्तसादी लेन देन अब बड़े पैमाने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए हो रहे हैं, जो अक्सर मोबाइल फोन पर आसान क्लिक के जरिए काबिल रसाई हैं। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि मुल्क का कानूनी फ्रेमवर्क इस तरह तब्दील हो जो इन जदीदकारियों की रफ्तार को बरकरार रख सके। इससे पहले राज्यसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामाराई की वजह से कई मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज ऐवान की बिला रुकावट कार्रवाई के सिलसिले में तावुन के खातिर ऐवान के अरकान से जाती तौर पर एक अपील की। जनाब बिरला ने पार्लियामेंट हाउस में मुनाकिदा कारोबारी मशावरती कमेटी की मीटिंग के दौरान ये अपील की। जनाब बिरला ने ऐवान में तातुल पर अपने दुख का इजहार किया। उन्होंने ऐवान की कार्रवाई चलने देने के लिए ऐवान के लीडरों से एक जज्बाती अपील की कि वो वक्फा इस सवाल की कार्रवाई चलने दें और अहम बिलों पर बहस में हिस्सा लें। जनाब बिरला ने तामीरी बहस, बामायने शिरकत और आला तरीन पार्लियामानी रिवायात की पाबंदी की अहमियत पर जोर दिया। स्पीकर मौसूफ ने सभी पार्टियों से उनके तावुन की अपील की ताकि ऐवान की कार्रवाई को बिला रुकावट और मुनज्जम तरीके से चलाया जा सके और लोगों से वाबस्ता मामलात पर एक जामे और सूदमंद बहस हो सके। उन्होंने कहा कि लोगों के मामलात के सिलसिले में इस तरह से इंतजार नहीं कराया जा सकता और उनका इस ऐवान में इजहार किया जाना चाहिए, उन पर बहस होनी चाहिए और उनका हल निकाला जाना चाहिए। PAC मीटिंग के बाद पार्लियामेंट के अहाते में नामानिगारों से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत तलबा के हालिया एहतजाज और मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस के लिए तैयार है। इस बात की यकीन दहानी कराते हुए कि वजीर दाखिला अमित शाह हर मामले पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, जनाब रिजिजू ने कहा कि शहरियों को हकायक जानने का हक हासिल है। उन्होंने अपोजिशन पर ऐवान में नज्म व जब्त बरकरार रखने और कार्रवाई में मजीद रुकावट न डालने पर जोर दिया। जनाब रिजिजू ने अपोजिशन से ऐवान की कार्रवाई चलने देने की अपील की ताकि वजीर दाखिला अमित शाह तलबा के एहतजाज के सिलसिले में बयान दे सकें और अपोजिशन अरकान की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब दे सकें।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल

0: चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
1: वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि हुकूमत पार्लियामानी बहस से कभी पीछे नहीं हटी है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि बीएसई मीटिंग के दौरान हुकूमत ने इस मामले पर जामे बहस के सिलसिले में वाजे तौर पर अपनी आमादगी जाहिर की थी। लोकसभा ने ट्रिब्यूनल्स इस्लाही बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस बिल का मकसद मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स में चेयरपर्सन और अराकीन की अहलियत, आज़ादी और तकरूरात और खिदमात को यकीनी बनाते हुए शफाफियत में इजाफा करना है। साथ ही इस बिल का मकसद ट्रिब्यूनल्स की इंतजामिया और कामकाज को बेहतर बनाना है। यह कानून नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन के क्याम की भी तजवीज पेश करता है। लोकसभा में नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामा आरई के दौरान इस बिल को बगैर किसी बहसो मुबाहिसे के मंजूर कर लिया गया। हंगामा जारी रहने पर सदर नशी ने लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर मुमलिकत सुरेश गोपी ने मुत्तला किया है कि हुकूमत ने पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथेनॉल की आमेजिश से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया है। वजीर मौसूफ ने राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में ये बात कही। जनाब गोपी ने कहा कि मुस्तकबिल में एथेनॉल की आमेजिश बढ़ाने के सिलसिले में कोई भी फैसला सिर्फ तफसीली साइंसी और तकनीकी मुताले और सभी मुतालिका फरीकों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका खेल 2026 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों से कल नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर मुलाकात की। बातचीत के दौरान तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों ने वजीर आजम के साथ खेलों के अपने तजुर्बात के बारे में बातचीत की। जनाब मोदी ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में उनकी कामयाबियों के लिए एतमाद का इजहार किया।
2: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के खिलाफ तलबा की जानिब से एहतजाज के तौर पर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश के सबब आज भी रांची में सूरत हाल कशीदा रही। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए पानी की बौछार, आंसू गैस का इस्तेमाल और लाठीचार्ज किया। इस दौरान जेपीएससी के साबिक चेयरमैन एल क्यांगेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की क्यादत में हजारों तलबा ने विधानसभा की जानिब मार्च किया और कई बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार की और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक कुछ मुजाहिरीन ने बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भी ताकत का इस्तेमाल किया। रांची सिटी के एसपी पारा सराना और एसपी रूरल गौरव गोस्वामी ने तलबा से अमन बरकरार रखने की अपील की और कहा कि पुलिस ने तहम्मुल से काम लिया है। मुजाहिरीन जेएसएससी सीजीएल इम्तिहानात के ताल्लुक से सीबीआई के जरिए गैर जानबदाराना छानबीन कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान झारखंड के सीआईडी ने भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के सिलसिले में जेपीएससी के साबिक चेयरमैन एल क्यांगटे को गिरफ्तार किया है। दिफाई उमूर के मरकजी वजीर मुमलकत जनाब संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की नुक्ताचीनी की है। नीज सीबीआई और ईडी के जरिए छानबीन कराए जाने की मांग को दोहराया है। इस दौरान हजारीबाग से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मनीष जायसवाल ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से बात की और इस मामले की सीबीआई के जरिए जांच कराने की तलबा की मांग को दोहराया। पुलिस कार्रवाई और जेपीएससी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद मामला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: इस साल 80वें यौम आजादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत की तामीर में नौजवान भारत के तावुन के साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने को उजागर किया जाएगा। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि तारीखी लाल किले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी तकरीबात की क्यादत करेंगे। वजीर आजम कौमी परचम फहराएंगे और मुल्क से खिताब करेंगे। पहली मरतबा यौम आजादी की तकरीबात में लाल किले की फसील से कौमी गीत गाया जाएगा। मुल्क भर में जारी हर घर तिरंगा मुहिम में नुमाया तौर पर तेजी आ रही है और ये जिंदगी के सभी शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को मुल्क के कौमी फख्र और इत्तेहाद के जज्बे का मिलकर जश्न मनाने की तरकीब

0: रही है। हर घर तिरंगा मुहिम इस माह की 17 तारीख तक जारी रहेगी और ये इस साल वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह से मुताबिकत रखती है, जिससे सभी शहरियों के लिए ये एक पुरजोश मौका बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी से इस मुहिम में जोशो खरोश के साथ शामिल होने और विकसित भारत की तामीर के सिलसिले में अपने ताउन के मजमू अजम का इदा करने पर जोर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी शहरियों से इसमें शामिल होने और तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली और बड़े पैमाने पर वंदे मातरम गाकर और तिरंगा फहराकर और हर घर तिरंगा .com पर सेल्फी अपलोड करके जश्न मनाने की अपील की है। उधर जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर सभी अजला में तिरंगा यात्रा और हुब्बुल वतनी के प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। ईरान की वजारत खारजे के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आबनाए हुरमुस तब तक नहीं खुलेगी जब तक वॉशिंगटन तेहरान के खिलाफ अपनी बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा। तेहरान में आज हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए बकाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइली फौज की जारहियत की वजह से तवानाई की सप्लाई की अहम बहरी गुजरगाह आबनाए हुरमुस को बंद किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आबनाए हुरमुस का दोबारा खोला जाना अमरीका और इसराइली हुक्काम की जानिब से ईरान पर आयद की गई शराइत पर मुनहसर है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल हिमाचल प्रदेश और मशरक राजस्थान में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक कल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, वस्ती, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। FIH मर्दों और खवातीन के हॉकी आलमी कप 2026 के मुकाबलों में ढांचा जाति तब्दीली की गई है। रिवायती क्वार्टर फाइनल मरहला खत्म कर दिया गया है और दो क्रॉस ओवर पूल्स के जरिए टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। बेल्जियम और नीदरलैंड मुश्तरका तौर पर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। ये टूर्नामेंट इस माह की 15 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक जारी रहेगा। नए फॉर्मेट के तहत टीमों के लिए इब्तिदा से गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी क्योंकि इब्तदाई मरहले के नतीज अगले मरहले पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। भारतीय मर्दों की टीम को इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल डी में रखा गया है, जबकि भारतीय खवातीन खिलाड़ी पूल डी में चीन, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमों से मुकाबला करेंगे। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट ने मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने, सरमायाकारी रागिब करने और रोजगार के मौके पैदा करने की खातिर टैक्सेशन बिल को मंजूर कर लिया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने यकीन दहानी कराई है कि UPI लेन देन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को शवाहिद की हैसियत से कानूनी तौर पर तस्लीम किए जाने से मुतालिक कानून को भी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो तलबा के एहतजाज से मुतालिक मामलात पर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान के लिए लोकसभा की कार्रवाई चलने दे। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में बेजाब्तगियों पर तलबा के एहतजाज में तेजी आ गई है। तलबा ने पुलिस कार्रवाई के दरमियान रांची में असेंबली की जानिब मार्च किया। और 80वें यौम आजादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 के लिए नौजवान भारत के ताउन को उजागर किया जाएगा। पहली मरतबा वंदे मातरम लाल किले की फसील से गाया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है और हर इंसान की चाहत रहती है कि हंसी खुशी ये सफर यूं ही चलता रहे, लेकिन प्रकृति का ये विधान है कि एक ना एक दिन ये सफर भी पूरा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब ये सफर खत्म होगा तब क्या हमारे पीछे ऐसा कुछ रह सकता है जो किसी और हम सफर के जीवन के बुझते हुए चिराग को रोशन कर दे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अंग दान की। एक ऐसा दान जो इंसान को उसकी मृत्यु के बाद भी अमर बना सकता है। भारत में हर साल लाखों लोग दोस्तों सिर्फ इसलिए समय से पहले दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कोई अंग जैसे किडनी, लिवर या हृदय नहीं मिल पाया। अस्पतालों के गलियारों में अपनों की जिंदगी की याचना करते परिवारों की आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद में पथरा जाती हैं। जरा सोचिए।

0: एक तरफ एक जिंदगी खत्म हो रही होती है और दूसरी तरफ उस पर निर्भर कई और जिंदगियां भी किसी एक अंग के न मिल पाने की वजह से कठिनाई झेलती हैं। अंगदान इसी समस्या के निवारण का एक रास्ता है, लेकिन इसे लेकर मौजूद हैं बहुत सी भ्रांतियां भी, जिनकी वजह से बहुत से इच्छुक लोग भी परोपकार के इस महान कार्य को या तो कर नहीं पाते या हिचकिचाते हैं। और ऐसी ही तमाम भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज पब्लिक स्पीक में हमने विषय तय किया है, अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से पधारे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
1: नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आम तौर पर जैसा कि लोगों के जहन में रहता है कि अंगदान जो है वो है तो एक बहुत ही अच्छा एक नेक कार्य है, लेकिन यदि हमारे माता पिता में से या संबंधी में से कोई एक ऐसी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर गए हैं तो जहन में ये आता है कि अब यदि हम वो अंगदान के लिए तैयार हो भी जाते हैं तो ये नहीं पता होता कि शायद कितने समय में हम संपर्क करें और क्या हमें उनका जो शरीर है, जो पार्थिव शरीर है, वो इस अवस्था में हमें मिल पाएगा कि उसे देखकर दिल को किसी तरह की ठोस ठेस ना पहुंचे और क्षत विक्षत वो स्थिति में ना हो, जैसे कि आम तौर पर लोग सोचते हैं और इस वजह से फिर वो हिचकिचा जाते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि कितना समय जो है वो आदर्श माना गया है अंगदान के लिए मृत्यु के बाद?
1: मृत्यु के बाद अंगदान के लिए आमतौर पर एक आईसीयू में जब मरीज दाखिल होता है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ये जांच द्वारा कि उसके मस्तिष्क की मृत्यु हो चुकी है, तो ब्रेन डेड हो उसको घोषित किया जाता है। और इसमें एक बार नहीं, दो बार परीक्षण किए जाते हैं और चार डॉक्टरों की टीम इसको सर्टिफाई करती है। तो उसके बाद ये ब्रेन स्टेम डेड डिक्लेयर करने के बाद में तो उसका उसको हम मेंटेन करके रखते हैं, सपोर्ट सिस्टम को हटाते नहीं हैं। अगर परिवार अंगदान की हामी भरता है तो उसके सारे ऑर्गेन्स जो डोनेट हो सकते हैं और वो दूसरों की जिंदगियां बचा सकते हैं, उसके साथ साथ उसके टिश्यूज भी डोनेट हो सकते हैं। तो टिश्यूज जो होते हैं वो इवन नेचुरल डेथ जो होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है या घर में मृत्यु हो जाती है या आईसीयू में नहीं होती, किसी वार्ड में मृत्यु हो जाती है, तो उनमें टिश्यू जैसे कॉर्निया, स्किन है, बोन्स हैं, वो भी डोनेट हो सकते हैं। और लेकिन अंगदान आम तौर पर जब आईसीयू में मरीज की मृत्यु होती है तो उसमें 8 लोगों तक की जिंदगी बच सकती है, जिसमें 2 किडनीज हैं, लिवर है, हार्ट है, 2 लंग्स हैं, फेफड़े जो बोलते हैं, और इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज भी दान हो सकते हैं। तो इसमें सभी को आगे आना चाहिए, ये एक नेक मुहिम है और सभी को इससे जुड़ना चाहिए।
0: शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक श्रोता हिसार हरियाणा से, राजेंद्र।
2: नमस्कार जी मनीष जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका?
2: मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाथ या पैर कोई डैमेज हो जाए तो दोबारा से लगवाना चाहे तो क्या लग सकता है, और दूसरा है ये आंख दान की हुई किन लोगों को नहीं लग सकती, ये जानना था। नमस्कार जी।
0: जी, तो आपने दो तरह के प्रश्न किए, एक तो खास तौर पर नेत्र से संबंधित है तो उसका जवाब आपको देंगे भारतीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जो विशेषज्ञ हैं, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा, और दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार। तो मैं पहले आपसे ये निवेदन करता हूं डॉक्टर अनिल कि इनकी जो ये शंका है उसका निवारण आप करें।
1: बिल्कुल, हाथ का भी दान होता है और हाथ भी प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, और हमारा देश पूरे दुनिया में हार्ट हैंड ट्रांसप्लांट के मामले में जो हाथ का ट्रांसप्लांट है, जैसे किसी के हाथ कट गए हैं किसी दुर्घटना में, कहीं मशीन में कट गए, या तो उस तरह के सिचुएशन में भी हाथ का दान करके भी हम उनका हैंड ट्रांसप्लांट करके, और वो भी 6 घंटे के अंदर ही हमें मृत्यु

0: उनका हाथ का दान कर देना होता है, तो वो आराम से उनको लगा करके, और 80 से ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे देश में हैंड ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, और ये दुनिया में आंकड़ा नंबर वन पर है भारत का, जो हैंड ट्रांसप्लांट का आंकड़ा है।
1: जहाँ तक नेत्र का सवाल है, आपका सवाल ये था कि किन लोगों को नेत्रदान करने के बाद भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नेत्रदान का मतलब ये होता है कि जो कॉर्निया से रिलेटेड, जो आगे जो पुतली होती है, जो ट्रांसपेरेंट, जो पारदर्शक पुतली होती है, उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसमें जब सफ़ेदी आ जाए तो फिर लोगों को उसके कारण अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो वो जो सफ़ेद पुतली है उसे हटाकर जो ट्रांसपेरेंट डोनर कॉर्निया है उसे लगाया जाता है। जो मरीज़ जिनकी नस सूख गई हो या पर्दा ख़राब हो गया हो या फिर एक होते हैं दिमागी रूप से उनको दिखाई कम देता है, जैसे कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, वैसे मरीजों को हम पुतली लगा के भी उनकी नज़र को हम वापस नहीं ला सकते।
2: तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक और हमारे श्रोता हैं हिमाचल प्रदेश शिमला से, और हमारे श्रोता हैं राकेश। राकेश जी, क्या प्रश्न है आपका, कहिए।
3: जी जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश जी। और मेरा एक प्रश्न ये है कि जो से दिव्यांग व्यक्ति हैं या दृष्टि बाधित लोग हैं, क्या वो अंगदान के पात्र हो सकते हैं या उनको दे सकते हैं या न दे सकते हैं, ये मेरा प्रश्न है।
2: अंगदान के पात्र हो सकते हैं क्या दिव्यांग व्यक्ति, ये इनका प्रश्न है।
0: मृत्यु उपरांत तो दिव्यांग व्यक्ति हो या दृष्टिहीन व्यक्ति हो, अगर उनके जो भी अंग जो अंग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और हेल्दी पाए जाते हैं, तो उनको दान किया जा सकता है। जब जीवित व्यक्ति जैसे कि कुछ अंग दान कर सकते हैं, किडनी या लिवर का हिस्सा, तो उसमें उनका मेडिकली फिट होना ज़रूरी होता है, तो और वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं जो जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है, कि अगर वो मेडिकली उनको फिट समझते हैं तो ही उनका दान किया जाता है। आमतौर पे दिव्यांग व्यक्तियों के अंग, क्योंकि उनके अपने आप ही एक दिक्कत है, तो उनको शायद फिटनेस नहीं मिलेगी अंग दान करने के लिए, लेकिन एज सच मृत्यु उपरांत अंग दान में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है।
2: जी, तो राकेश जी का जो सवाल था दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में, आशा है हमारे अन्य श्रोताओं को भी ये जानकारी मिली गई है कि वे भी कर सकते हैं, किंतु ये एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि वो स्वयं एक कठिनाई से गुजर चुके हैं। तो इस प्रकार जो स्पष्टीकरण दिया है डॉक्टर अनिल ने, वो आप तक पहुँचा है। और डॉक्टर साहब, एक और बड़ा ही खास एक ये स्थिति होती है कि अंग दान जो है, जहाँ तक बड़े शहरों की बात है, देश की राजधानियाँ हैं या जो महानगर हैं, वहाँ पर शायद ये बहुत सरलता से हो सकता है, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जो दूर दराज के गांवों में कस्बों में रहते हैं, और यदि उनकी ऐसी इच्छा हो तो वो कहाँ भला फिर वो इसके लिए संपर्क करें, इस विषय में आप हमें बताइए।
0: इसमें अंग दान के लिए एक तो हम कहते हैं कि आप रजिस्टर करवा लें, तो वो प्रक्रिया डिजिटली अवेलेबल है। नोटो की वेबसाइट पे जाके आप अंग दान एक मिनट में अपने आधार से अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करके एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है कि पेरेंट्स के डिटेल हैं, कौन से अंग और उत्तक आप दान करना चाहेंगे मृत्यु उपरांत, तो वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया मात्र एक मिनट की है। उसको आप वेबसाइट से जाके noto.mohfw.gov.in पर आप वो फॉर्म भर सकते हैं, और आधार से सत्यापित ये फॉर्म होता है। दूसरा, आप हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर मैं बता देता हूँ, 1-800-114770, 1-800-114770। तो ये 24 घंटे चलने वाला नंबर है। कहीं से भी आप कोई अंग दान के लिए रजिस्टर करना चाहे या अंग दान करवाना चाहे, तो ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, उसके द्वारा हमारी टीम जो इसको मैनेज करती है, वो वहीं के नज़दीक के ही अस्पताल से टीम भेज कर

0: की मृत्यु उपरांत भी अगर आप जानकारी देते हैं तो कॉर्निया डोनेशन है होता है तो वो नज़दीक के आई बैंक से टीम जा करके कॉर्निया का दान करवा पाएगी। लेकिन आपको जानकारी सही समय पर देनी है, समय से देनी है। 6 घंटे तो मैक्सिमम टाइम हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो आपको टाइम से फ़ोन कर देना है तो आपका ये सब हो जाएगा, चाहे आप कहीं भी दूर दराज भी एरिया में भी हो तो।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा से, और आप हैं अविनाश। अविनाश, क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
2: जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: जी मेरा सवाल है कि देखिए मतलब कि जो लोग अंग दान करना चाहते हैं और उनके परिवार भी पहले राजी हो जाते हैं और अपना फॉर्म पे मतलब कि सारा कुछ फिलअप कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो उस पेशेंट की मृत्यु के बाद अगर उनके परिवार फिर से नकार जाएगा, नहीं इनका अंगदान नहीं करवाएंगे, तो फिर उस वक्त हम क्या कुछ कर सकते हैं?
3: देखिए ऐसा है कि कोई भी अंगदान अगर होना है तो जिस इंसान की मृत्यु हो गई है तो उनके जो परिवारजन हैं, जैसे उनके बच्चे या उनके लड़के लड़कियां या उनके पोते पोतियां भी, वो उनका कंसेंट ज़रूरी होता है। अगर वो कंसेंट नहीं देते हैं तो उनका अंगदान नहीं हो सकता है।
1: जी तो अविनाश, उम्मीद है आपको अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया है। और नेत्रदान के ही विषय में डॉक्टर राजेश, एक और सवाल अक्सर ये आता है कि कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं, लाइक किसी बीमारी, उम्र या अन्य कारण जिससे ग्रसित व्यक्ति, क्या ऐसा कुछ है कि वो नेत्रदान नहीं कर सकते? लेकिन आपसे हम इस प्रश्न का उत्तर लेंगे अपने श्रोता के इस प्रश्न के बाद। हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से, और आप हैं विजय कुमार साहनी। जी विजय जी कहिए। जी प्रश्न पूछिए। हाँ, विजय जी।
4: हाँ मनीष जी।
1: जी
4: मनीष जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: मैं विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवा तहसील से, जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मेरा सवाल यह है कि मैं अंगदान करना चाहता हूँ, इसका प्रोसीजर जरा बताइए हमें।
1: अंगदान आप करना चाहते हैं और उसका प्रोसेस यानी उसकी प्रक्रिया क्या है ये जानना चाहते हैं।
0: तो जैसे अभी हमने बताया पहले भी कि आप ये डिजिटल माध्यम से अंगदान के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं एडवांस में ही, क्योंकि आप अभी पूरे होशोहवास में हैं, आप अपने लिए सोच सकते हैं। तो नोटो की वेबसाइट है, मैं वेबसाइट फिर बता देता हूँ, noto.mohfw.gov.in, या नोटो भी लिखेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्टर फॉर प्लेज को क्लिक करेंगे तो आपका वो अपना आधार नंबर डालेंगे तो आधार नंबर के बाद एक OTP आएगा आपके मोबाइल में, तो आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए जो आधार से लिंक्ड है और आधार नंबर आपको पता होना चाहिए। तो आपका घर का कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी इसको जानकारी रखता है वो कर पाएगा। एक मिनट का आपके, उसके बाद आपको अपने एक फॉर्म भरना है, उसमें अपने माता पिता का नाम और कौन से अंग वगैरह आप दान करेंगे और इमरजेंसी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने होते हैं। आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपका ई डोनर कार्ड तुरंत आपके मोबाइल पर ही डाउनलोड कर सकते हैं, और 24 घंटे की आपको कोई हेल्प चाहिए वो हेल्पलाइन नंबर मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस हेल्पलाइन पे आप कॉल करके अंग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो कॉलर पे वहाँ पे बैठा है वो आपका अंगदान तुरंत आपका रजिस्टर करवा देगा। तो इसमें लेकिन आप ये आप मान के चलिए कि अंग रजिस्टर करने के बाद भी अंगदान के लिए परिवार को बताना बहुत ज़रूरी है, परिवार में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही उनकी सहमति के बिना आपका अंगदान, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया, आपका अंगदान मृत्यु उपरांत नहीं हो पाएगा। तो परिवार को बताना, उनसे डिस्कस करना कि ये मेरी इच्छा है और ये इसमें सहयोग करें आपकी मृत्यु के उपरांत, तो वो फिर जब भी कॉल करेंगे, हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चलता है,

0: आप उस पे कॉल करके आप ये प्रक्रिया को पूरा आपका परिवार करवा सकता है।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम बात कर रहे हैं अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा विषय पर चर्चा। और दोस्तों, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, श्रीकांत चाकरे। जी श्रीकांत जी, क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
2: हेलो
1: जी। जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार
2: श्रीकांत, मैं श्रीकांत चाकरे बोल रहा हूँ, मैं पूरे महाराष्ट्र से। तो मेरा सवाल ये है कि मेरा नेत्र का ऑपरेशन हुआ है, मेरा रेटिना का, तो उसमें मेरी जो ज्योति चली गई है आंखों की, तो इसी केस में कोई यदि डोनर मिलता है तो उससे कोई फायदा हो सकता है क्या? आई डोनेट करने वाला जो है।
1: जी, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे डॉक्टर राजेश। जी जी
0: जी, ऐसा है श्रीकांत जी कि आपका आपकी जो नजर गई है वो पर्दे की खराबी के कारण गई है, और वो नज़र पुतली के खराबी के कारण नहीं गई है। और जो नेत्रदान होता है उसमें हम पुतली बदलते हैं, और यदि पुतली तभी बदलते हैं जब पीछे का पर्दा अगर हेल्दी है या फिर नस सूखी ना हो। तो क्योंकि आपका पर्दा पर्दे में खराबी है और आपकी नज़र पर्दे की खराबी के कारण गई है, तो नेत्रदान करने से उसका फ़ायदा नहीं होगा। जब बल्कि आपको किसी पर्दे के स्पेशलिस्ट के पास दिखाना चाहिए, और वो एक बार फिर से पर्दे का ऑपरेशन करके, उसका इलाज करके आपकी नज़र को वापस ला सकते हैं।
1: श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की फ़ोन लाइंस बराबर खुली हुई हैं। हमारे नंबर हैं 0112331048 और 2371717 तथा 2371710106। लेकिन इन नंबरों से पहले भूलिए नहीं 011 अवश्य लगाइए। और व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको बता देते हैं अपना, 9289094044। और हमारे एक और श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे मथुरा उत्तर प्रदेश से, चौधरी महेंद्र सिंह। जी चौधरी साहब, बताइए क्या है आपका सवाल।
3: स्टूडियो में आमंत्रित आदरणीय विशेषज्ञ महोदय, नमस्कार।
0: नमस्कार
3: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी से नेत्रदान करना चाहे और परिवार भी सहमत हो, तो ये इन्फॉर्मेशन दानकर्ता को कहाँ देनी होगी? वो टीम घर आएगी या फिर कोई न कोई उनको खबर देनी होगी? दूसरी बात ये है सर कि मृत्यु के बाद कई घंटे तक वो रोशनी बरकरार बनी रहती है।
0: जी हाँ, एक्चुअली मृत्यु के बाद जल्दी से जल्दी नेत्रदान कर देना चाहिए। जहाँ तक समय का सवाल है, पहले 6 घंटे बड़े कीमती होते हैं, उन 6 घंटों में यदि नेत्रदान कर दिया जाए तो उसका उपयोग बहुत सही तरीके से हो सकता है। और उसके बाद भी अगर मौसम अगर ठंडा हो, अगर सर्दियों का मौसम हो, तो उसमें हम 8-10 घंटे तक भी, या फिर बॉडी को अगर बर्फ़ पर लिटाया हुआ हो, ठंडे वातावरण में रखा गया हो, तो हम आगे भी 8-10 घंटे और 12 घंटे तक भी हम नेत्र को निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक इनका पहला सवाल था वो
4: कैसे खबर करें,
0: हाँ पहला सवाल ये था कि आप खबर किस कैसे करेंगे कि यदि मृत्यु हो गई हो तो नियरेस्ट जो भी कलेक्शन सेंटर हो, आप जिस शहर में हैं उस शहर का जो कलेक्शन सेंटर है, जो भी कोई आई बैंक है वहाँ पर, तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिर डॉक्टर साहब ने जैसा नोटो का नंबर बताया था, वहाँ कर सकते हैं। और एक नेशनल आई बैंक का नंबर है 9999168374। तो दिल्ली NCR में यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो ये नेशनल आई बैंक के इस नंबर पे भी फ़ोन

0: कर सकते हैं जो कि 24 घंटे खुला रहता है, और उससे आप जानकारी दे सकते हैं और नेत्रदान कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आज का विषय है अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और हमारे साथ एक और श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी, कहिए क्या है आपका सवाल।
2: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे ये अंगदान का जो प्रोसीजर के बारे में पूछना था। जैसे कोई एक आदमी कोई मतलब मरने से पहले जो मतलब अंगदान का जो संकल्प पत्र कुछ लिख के देता है कि मेरे मरने के बाद मुझे ये अंगदान करना है, तो इसके बाद जो रिलेटिव का जो रोल होता है, अगर वो इसने क्या मतलब नियम है कि रिलेटिव अगर उस टाइम भी ना अगर चाहेंगे कि नहीं देना है, बॉडी नहीं देनी है अंगदान के लिए, तो ये पूछना था कि रिलेटिव का इसमें क्या रोल होता है। थैंक यू।
0: देखिए, रिलेटिव का रोल हमने पहले भी बताया, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप संकल्प पत्र भरने के बाद भी जो डिजिटल प्लेज आप ले लेते हैं, आप उसमें भी दो नंबर हम लोग पूछते हैं रिश्तेदारों के, उनके नंबर भी भरवाते हैं कि आपके क्लोज रिलेटिव, तो आप उनको बताएं जरूर कि आपने ये संकल्प पत्र लिया है और आप चाहते हैं कि आप मृत्यु के बाद आपके अंगदान हो। तो वो रिलेटिव को अगर आप सबको बता के रखेंगे, डिस्कस करेंगे, और उनके कोई अगर डाउट है तो उसको पहले से ही उनको दूर करेंगे, तो ऐसा आमतौर पे नहीं होता कि रिलेटिव ऑब्जेक्शन करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर में अगर आपने इच्छा जाहिर की है तो हम लोग सभी एक फ़र्ज समझते हैं कि हमारी एक फ़र्ज है कि हम आपकी उस इच्छा को पूर्ण करवाएं। ये भी परिवार के लोगों का भी यही भावना रहती है, तो आप बताएं ज़रूर। ऐसा ना हो कि किसी को पता ही ना हो कि आपने प्लेज ली थी। और आपका जैसे मैंने पहले भी राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर बताया, मैं फिर बता देता हूँ, 1800-11-4770, 24 घंटे नंबर खुला है। आप उस पर कॉल करके कोई भी जानकारी मृत्यु की भी दे सकते हैं और वो टीम आपको फैसिलिटेट करेंगी। जी
1: जी हमारे एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मोहम्मद कासिम, या जिस तरह से शायद ही लिखा है, मोहम्मद काजिम जी, कहिए क्या प्रश्न है आपका।
3: जी नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार।
3: मेरा सवाल, दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि एक बार हमें अगर दान की मदद से अंग लगे हों तो क्या हम वो अंग डोनेट कर सकते हैं? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो अबाउटिड क्रिप्टोफॉल्मस की बीमारी है, क्या इसमें आई डोनेशन की जा सकती है?
1: जी,
0: जहाँ तक आपने कहा क्रिप्टोफ्थैल्मस की बीमारी है, तो उसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि आँख के अंदर की स्ट्रक्चर इंटैक्ट है या नहीं है और सही है या नहीं है। तो यदि किसी को ऐसा है तो उसके नेत्रदान करने से शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो सके, क्योंकि कई बार क्रिप्टोफ्थैल्मस में पुतली भी खराब रहती है और उस पुतली का डोनेट करने का फ़ायदा नहीं होता है।
1: जी शुक्रिया डॉक्टर राजेश। और हमारे एक और श्रोता मध्य प्रदेश के छतरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रशीद अहमद खान जी।
4: नमस्ते सर।
1: नमस्कार। नमस्कार।
4: सभी देशवासियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं सर।
0: आपको भी।
1: आपको भी
4: जी। मतलब दो छोटे छोटे सवाल, एक तो बॉडी में सर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या लिवर, तो शायद अपन लोग जीते जी कुछ पार्ट उसका डोनेट कर देते हैं, तो कितना % डोनेट कर सकते हैं अपन, प्लीज बता दीजिए।
1: जी हमारा जो देखिए आज का विषय है उससे ताल्लुक तो आपका दूसरा सवाल रखता है, लेकिन फिर भी दोनों ही सवाल आपके महत्वपूर्ण हैं, और डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपकी इस शंका का समाधान करें। डॉक्टर अनिल
0: जी, जी वैसे देखा जाए तो जो सॉलिड ऑर्गन है उसमें लिवर को ही सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। वैसे जो स्किन है, टिश्यू जो पूरे बॉडी को कवर करता है, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब टिश्यू के रूप में आता है। और लीवर का कितना हिस्सा दान किया जाता है, ये डिपेंड करता है कि जो लेने वाला, जिसको लगना है, अगर वो कोई बड़ी शरीर वाला

0: व्यक्ति है जिसको हाई बड़े वॉल्यूम की जरूरत है, तो लिवर का आमतौर पे एक पार्ट दिया जाता है, एक दो लोब होते हैं लिवर में, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो एक लोब आमतौर पे दिया जाता है या तो राइट साइड का या लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट राइट का बड़ा होता है और लेफ्ट का छोटा होता है। तो लेफ्ट होता है आमतौर पे 30 से 40% और राइट होता है 50 से 70% तक। तो अगर जिसको बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत है मरीज को, तो उसको राइट लोब लगा दिया जाता है, और जिसको छोटे वॉल्यूम से भी काम चल जाएगा, लीन एंड थिन कम वेट का रेसिपिएंट है, पेशेंट लेने वाला है, तो उसको लेफ्ट लोब लगा दिया जाता है। तो आमतौर पे एक लोब लगता है, या तो राइट या लेफ्ट लोब।
1: जी, और हमारे जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9289094044, और आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और डॉक्टर राजेश, जैसे कि आपसे मैं एक सवाल कर रहा था जो हमारे श्रोता जब हमसे बात करने लगे तो वो शायद बीच में छूट गया, कि कई बार ये शंका जाहिर करते हैं कि लोग अगर इच्छुक होने पर भी क्या वो नेत्रदान कर सकते हैं अगर उन्होंने कैटरेक्ट की सर्जरी जो है वो करा ली है या ज़्यादा नंबर का चश्मा पहनते हैं, तो उनकी इच्छा है तो क्या वो इस पुण्य कार्य में सहभागी हो सकते हैं?
2: जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। यदि कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद पुतली बिल्कुल ठीक है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। और चाहे चश्मा लगाते हों, कितना भी बड़ा नंबर हो उससे मतलब नहीं है। पुतली स्वस्थ होनी चाहिए, कॉर्निया हेल्दी होनी चाहिए, और ये सारे लोग जिन्होंने जो भी ये इस तरह का ऑपरेशन कराया हुआ है, यदि उनकी पुतली ठीक है तो वो कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं।
1: जी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं आज हमसे जुड़े और उनकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान वो हुआ, लेकिन फिर भी एक बहुत अहम सवाल दिल में ये आता है कि इतना जो पुण्य कार्य करते हैं लोग जो अंगदान का, क्या उनके प्रोत्साहन के लिए भी डॉक्टर अनिल किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है?
0: भारत सरकार के जो कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय अंग कार्यक्रम, अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग उनके एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भारत सरकार की तरफ से एक राशि दी जाती है। और आजकल और उनको एक ये प्रावधान है कि उनकी बॉडी को बहुत रेस्पेक्टफुली हम लोग हैंडओवर करें, और उसमें उनके हैंडओवर करने के लिए हम लोग उसको एक शॉल या एक बुके ऑफ फ्लावर या एक सर्टिफिकेट भी दे आता है उनको अंगदान के इस नेक मुहिम के लिए आगे आने के लिए।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और दोस्तों, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। हम अपने श्रोताओं के आभारी हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमारे साथ थे राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए मुझे
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद
1: शर्मा को। नमस्कार
2: नमस्कार।

0: आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रति सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट।
1: बिल पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंक कार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।

0: among various other things that it wants to do.
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है. यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है. इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है.
0: Permits authentication through manual, digital and electronic signatures.
2: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है. स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया. श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है. इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है. साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें. संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है. कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं. भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है. पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है. झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. एफआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा. प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेंगी. ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

0: This is Akashvani, the news read by Nishit Kumar. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya Sabha returning it to the look.
1: इसके बारे में पूछा गया डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर एंड डीएसओ फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है डिमांड साइड मैनेजमेंट क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे तभी हम रेगुलर पावर की सप्लाई हम कर पाएंगे और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है स्मार्ट ईवी चार्जिंग क्योंकि आगे आगे अब हमारी जो डिमांड है चाहे डाटा सेंटर्स हो अथवा ईवी चार्जर हो एआई का जो इस्तेमाल हो इससे एनर्जी की डिमांड ये हमारी बढ़ने वाली है इसलिए जीआईएस बेस्ड एसेट मैपिंग और डिजिटल ट्विन इसी प्रकार टाइम ऑफ यूज टैरिफ यानी टाइम ऑफ यूज में जिस समय हमारे पास सोलर पावर ज्यादा है

0: रास्ते में जा रही है और टोटल देश भर के डिस्कॉम्स का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तहत टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए, इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी इसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर इसको जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से भी ऊपर था, अभी देश भर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लांट परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो। ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर के संचालन को भी प्रभावित करती है। तो हमने तीन प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना ने पीएम कुसुम की तीन योजनाएं बनाई गई है। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम इसके ऊपर डाला जाएगा, और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, न पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है, अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। धन्यवाद। ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है, और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको अलाउ किया है तो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है, कोई आएगा तो अच्छा है, पेड के लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहां तक पूछा है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। तो ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे मैंने उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसल्टेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी।
1: नाउ द सेकंड सप्लीमेंट्री सतरंग सिंह सांडो जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 9,600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया, पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, सवाल भी पूछना चाहूंगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा, और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद
3: सभापति महोदय। ये विषय तो पंजाब के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है। वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती है प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रखकर के ध्यान में रखकर के बनाती हैं। पंजाब की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्कॉम की, जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत ही अच्छी नहीं है, तो पंजाब की डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। ये ठीक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता REC से PFC से

0: लेकिन आज इसी पीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप देखनी है कि कौन सा लोन हमको देना कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहाँ तक पावर किंग की डिमांड है, इस डिमांड को भी समय समय पर पूरा करते हैं, जब भी ये मांगते हैं तो करते हैं। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम या पंजाब की सरकार आगे नहीं बढ़ती है, आगे न बढ़ने के कारण से, सेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूतिपूर्वक सोची नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है। और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा क्लोज करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिग्युटी पाई गई, उस एम्बिग्युटी के कारण से उनका केस एप्टल में चला गया। एप्टल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्टल का 16 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा, इनके फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए।
1: श्रीमान विजय चंदाकालिया जी, श्रीमान विजय चंदाकालिया जी,
2: धन्यवाद जी, धन्यवाद चेयरमैन जी। पूर्णिमा का ग्रीन हाइड्रोजन हब इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन आई एम विटनेसिंग दिस green hydrogen plant in our own district. So the project envisages an investment of approximately 1.85 lakh crore, including 20 gigawatt of renewable energy capacity, and is planned to produce 1500 TDP of green hydrogen and 7500 TDP of green hydrogen derivatives. So my question here is, I want to ask the Honorable Minister, if the government is considering measures to ensure time-bound coordination between NTPC, the central transmission utility and other concerned central agencies for the required transmission and grid connectivity, so that adequate power infrastructure is in place ahead of commissioning and does not constrain the hub's planned capacity or future expansion.
0: Honorable Minister, Shubham Mohoday, वैसे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया कौन से प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो उन्होंने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, मैं मानता हूँ बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइन की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको सुधार करने के बाद हम ROW का जो सेक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइंस तय की है। और नई गाइडलाइंस मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको, और वहाँ की लाइनें चालू हो गई हैं। लेकिन जहाँ कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहाँ इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहाँ कहीं भी विषय कर रहे हैं वो प्रश्नों के अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसका उत्तर दे
1: देंगे। फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा, तो श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी,
3: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है, आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदा बाजार जिला है छत्तीसगढ़ का, वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहाँ लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहाँ लगाने की कोई योजना है, या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगाने की कोई योजना है? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को जो मुझे यहाँ आप सब के बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है, सादर प्रणाम।
1: आदरणीय मिनिस्टर,
0: आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 गीगावाट

0: खबर है ये, इसको हमने आपूर्ति की है और आज भी हमारी तैयारी है तो 284 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है। अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष में 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है, इसलिए पावर देश भर में अब सरप्लस तैनात है लेकिन पावर सफिशियंट हम अपने देश के अंदर है। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर का जो ओपन मार्केट में उपलब्ध है और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जहां तक विषय है कहीं पावर की कोई भी हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो ये स्थानीय विषय कोई हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो कम जवाब देंगे।
1: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज आप सुनेंगे राजलक्ष्मी आहूजा की आवाज में गजल।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ ये गीत चोरी चोरी फिल्म से। प्रोग्राम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं रात।

अनाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में। प्रोग्राम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है अनुपमा, आवाज़ लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, यह आवाज़ थी हेमंत कुमार की और फिल्म का नाम था कोहरा। फिल्म संगीत का यह प्रोग्राम आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए अगला गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ सुनिए। इसे हमने लिया है अनारकली फिल्म से।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत लव इन टोक्यो फिल्म से। श्रोताओं, आज के इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के गीत सुने उनके नाम हैं चोरी चोरी, रात और दिन, अनाड़ी, अनुपमा, कोहरा, अनारकली और लव इन टोक्यो। अभी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.5 एक मीटर यानी 603 किलो हर्ट्स, FM बैंड 101.2 मेगा हर्ट्स, साथ ही दूरदर्शन के DTH चैनल पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, इन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do,
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: Permits authentication through manual, digital and electronic signatures.

0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन में तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश के बाद बाढ़ आने की खबर है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तट से टकराने के बाद तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद खतरा बना हुआ है। आज सुबह तक फुजियान प्रांत में जमीन और समुद्र दोनों तरफ के संवेदनशील क्षेत्रों से 168,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज, साथ ही दूरदर्शन के DTH चैनल पर। श्रोताओं, रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। हमारी प्रसारण सभा अब संपन्न होती है। कल सवेरे 5:53 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।